0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही.
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका. फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 PM. क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया.
3: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। मेरा हक है इसमें सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते. सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा. अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे.
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: और झुमका।
1: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
2: बिग टाइम चेक
3: मॉर्निंग 7:07।
2: Bollywood.

0: वेरी वेरी कॉमन हियर इन द यूए, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को छोड़ छाड़ कर यहाँ पर पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। इस काम में आपका साथ दिलवाने के लिए आ गए हैं हम ऑन बिग 106.2
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: क्या है हाल और क्या है चाल ऑन दिस फ्राइडे की सुबह 10th of July। इज इन द फ्राइडे लाइक अ रियली ग्रेट थॉट? आई मीन जस्ट अ फ्यू मोर आवर्स एट वर्क, उसके बाद तो मतलब दो दिन ऑफ वीकेंड। कैसा रहा यह हफ्ता आपका? अगर इफ यू डन समथिंग इनक्रेडिबल, इफ यू क्रैक दैट क्लाइंट that you were chasing for a while, there was some sort of a office get together, a gathering that was you know worth mentioning, yeah, ऐसा कुछ हुआ जो याद रहेगा इस हफ्ते, let me know, give me a call, share it with us, 800-1062 is the number, let's sign this week off in style coming up in just a while. इतना कम फर्क होने लगा है between the original and the remake, it's very difficult to make out, हमें बताना पड़ता है, ये इश्क अमीना 2.0 है. From Baby Do Die Do, literal translation into English of Baby Karmarkar is the name of Huma Qureshi in this film, jo ki cinema halls mein hai, by the way. In case there's a song jo aapko sunna hai, if there's a request that you want to make, you can always WhatsApp it to me, 054-309-1062, that is our WhatsApp number, 054-309-1062. This is The Big Breakfast with me, Sid.

0: The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: दिस इज अमेजिंग, आई लव इट व्हेन दैट हैपेंस, कि जब मैं स्टूडियो में बाद में आता हूँ मेरे से पहले कुछ मैसेजेस आने लगते हैं.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: Yes, messages for the big summer surprises. Everybody knows that this is the biggest thing that's happening on the radio. Ek staycation jeetne ka mauka, staycation pe jaane ka mauka, wo bhi bilkul muft. Somebody else is paying the bill. Then how can you say no to that? Big summer surprises mein spell battle khelenge hum log. Abhi halanki 2 ghante bache hue hain is contest mein. But you can keep WhatsApping BSS space your name in case you're back from a big vacation. Bhai log ja rahe hain, aap aa rahe hain. Here's what you got to do. BSS for big summer surprises type kijiye. Space dekar apna naam. BSS space apna naam. WhatsApp karte rahiye 0543091062 per you could win a staycation, a family staycation at the wonderful Rixos Almirid in Russell Khema. Saath mein on the spot movie tickets and an F&B voucher as well. From Film Crew, Ghagra coming up in just a while. This is Big Breakfast with me, Sid.
2: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना.
3: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना.
2: अलरास बोले तो
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं.
2: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी. विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर.
1: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. The Big Mix with Zora, weekdays 1 to 5 p.m. only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
4: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
0: गुड मॉर्निंग, 7:25 ऑन द क्लॉक ऑन दिस फ्राइडे की सुबह. 33 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी वेरी हाई 75%, पर विंड्स ब्लोइंग एट 14 किलोमीटर्स पर आवर. पार्टली सनी पार्टली क्लाउडी स्टार्ट टू दिस फ्राइडे मॉर्निंग. हाईज ऑफ 38 राइट नाउ, लोज ऑफ 33 डिग्रीज.
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे।

0: देखो देखो वहाँ क्या
1: नाम है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 8:09।
1: बॉलीवुड

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, पाते हैं कड़ी मेरी लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

0: माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे। बहुत रुकी है आज तू, पानी बन के खुद को बहने दे।
1: शुभ बादशाह।

0: बिल्कुल पानी की तरह स्मूथ हिज एतिहाद द पैसेंजर रेल फ्रॉम फुजेरा टू अबू धाबी एंड बैक.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: वीकेंड आ रहा है और यार ये करना है मेरे को डे ट्रिप Fujairah to Abu Dhabi in a brand new Etihad passenger rail. How does that sound? And it's all kind of really well tailored and well designed around, you know, taking a day trip to and from Abu Dhabi and Fujairah. And jo teen jo options hain aapke paas when you're buying tickets. Of course, tickets can be bought through the official Etihad Rail ka website. Etihad Rail ka mobile app bhi hai. And you've got you know, up to 4 weeks in advance you can buy these tickets. So, अच्छे से इस ट्रिप को डे ट्रिप को प्लान करने का चांस है आपके पास. देर आर थ्री ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू टिकट्स. द सेवर ऑप्शन हैज द लोएस्ट फेयर, लेकिन फिर कोई चेंज या रिफंड आप नहीं कर सकते हैं. सीट्स आर ऑटोमेटिकली एलोकेटेड. देन देयर इज द वैल्यू ऑप्शन जो कि आपको थोड़ी एडेड फ्लेक्सिबिलिटी देता है. एंड देन यू कैन चेंज द टिकट फॉर फ्री अप टू 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर. उसके बाद आपको 20 दिरहम भरने पड़ेंगे. एंड देन देयर इज द फ्लेक्स ऑप्शन दैट अलाउज फ्री चेंजेस अप टू 30 मिनट्स बिफोर डिपार्चर एंड गिव्स फुल रिफंड इफ द टिकट इज कैंसल्ड अप टू 24 आवर्स बिफोर अ ट्रैवल. Right, and introductory fares chal rahe hain 55 dirhams for comfort class, 120 dirhams for premium class, 2 to 17 years ke bachche and 17 ke bachche and 60 plus receive discounted fares as well. And here's how you can arrive at the station. Mohammed bin Zayed City Etihad Rail ka station in Abu Dhabi, 30 kilometers hai from the city center, and you're greeted by Emirates Sands ka display, a beautiful stylized 3D map of the planned rail network. It's going to be made available at each of the 7 Emirates. And to get there are various options. Agar aap drive kar rahe hain wahan par, if you have a ticket, then there's free parking out there. Then there's the Hafilat bus pass also can be purchased alongside the rail tickets. 10 dirham mein shuttle service hai, Reem Mall, Adnoc headquarters and Adnic. But these must be booked when booking the train ticket. So keep that in mind in case you plan to take the bus. And you got to reach there 20 minutes in advance. Train timings are also very important. 8:19 pehli train service nikalti Abu Dhabi se and reaches Fujairah at 10:04. Afternoon service departs at 1:53 and the evening service leaves at 6:39. Wahi Fujairah to Abu Dhabi starts at 5:34 a.m. and then you know, it reaches Abu Dhabi at 7:19. Mid-morning train 10:59 and the evening train is at 5:28 p.m. and reaches Abu Dhabi at 7:13. How wonderful is that? Yeah, so very useful information. Agar aap meri tarah plan to kar rahe hain day trip, I don't know when it's going to happen. I hope very soon. फिलहाल द शेर बलोच वर्जन ऑफ दीदी फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. इन केस आपने ऑलरेडी कर लिया है डे ट्रिप ऑन द एतिहाद पैसेंजर रेल, गिव मी अ कॉल, लेट मी नो योर एक्सपीरियंस. 800-1062 पर
1: बिग 106.2.

0: The Big Breakfast, brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters.
1: This summer, there are surprises all across Dubai, waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
0: The Big Jill.
2: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: The Big Mix. Miss kiya gaya?
4: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
5: बताइए मुझे कि ये विजय सिंह जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये असल में कौन है?
6: ये है अपने बॉबी डियोल।
5: अपने बॉबी, अरे मतलब गली में रहते ना पीछे नुक्कड़ पे जो रहते अपने बॉबी डियोल।
6: हाँ जी।
5: Are you a fan of his?
6: No,
5: no. What?
6: Yeah, I do like some of his performances. Yeah.
5: Recently, you know that he's made a very, very good comeback. Yeah, सबसे impactful, strong comeback इन्हीं का रहा है recent times में, I think.
6: हाँ.
5: ये देखी थी आपने Animal? अच्छी लगी थी आपको?
6: मिसोजिनिस्टिक लगी.
5: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, क्योंकि ये मुझे लगता था मैं अकेली हूँ इस चीज में. ही डिड अ वेरी गुड जॉब. अच्छा मुझे जल्दी से एक बात बताओ, ये Animal मूवी में इनका कोई डायलॉग सुना दो मुझे.
6: इनका कोई भी डायलॉग नहीं है ना.
5: शाबाश, मैं टेस्ट कर रही थी क्योंकि कभी कभी बोल देते ना, अरे मैंने तो देखी है, मुझे बहुत पसंद आई थी.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
7: Hey, jaldi utha tera khada ra. Chal hata. Are jaldi utha.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
8: Some unusual traffic this morning and heading for this time of the day. I mean, hota to hai, but 10 बजे के बाद यूजुअली होता है, बट आज सरिसा से मिर्दिप से हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स अलवरका 1, यू विल फाइंड वन पॉकेट ऑफ ट्रैफिक एंड द अदर ऑन द सेम रूट 311 पर गोइंग टुवर्ड्स दुबई सिलिकॉन ओएसिस आफ्टर अलवरका 1 एज वेल. ड्रैगन मार्ट के ठीक बाहर ओनी 44 ऑल्सो देयर हैज बीन एन इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड एंड दिस इज हेडिंग वेस्ट ऑन E4. एक बार फिर अर्केल रोड E44 राइट आउटसाइड ड्रैगन मार्ट, सो दैट इज वन hotspot. Also staying at Alkhel Road going towards Business Bay from D3, and also a bit of congestion building up at Alkhuz 4th. Chalte up north, heading south, going towards Dubai from Sharjah 311, Industrial Area 15 par, and Al Nada Interchange 1 par bhi aapko milegi 5 se 7 minute ki der.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
9: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे. लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे. मिट्टी संग लेते हैं, मिट्टी में मिल जाओगे.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: Ladies and gentlemen, in case you missed it last evening, lucky you. But ek baar phir se, the Indian World Cup winning team has lost a T20 against England.
0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: पहले कभी भी नहीं हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ T20s फॉर इंडिया दैट पांच गेम ऑन द ट्रॉट इंडियन टीम हारी हो, बट दैट हैज हैपेंड दो अगेंस्ट आयरलैंड. व्हाइट वॉश वहां पर हो गया एंड व्हाइट वॉश होने की कगार पर हम लोग यहां पर भी खड़े हुए हैं. इट इज 3-0 विद 4 गेम्स प्लेड. वन ऑफ देम वाज वॉश्ड आउट थैंकफुली एंड दिस इज 1 गेम टू गो. सो ये सीरीज तो भाई गई भैंस पानी में हो चुका है. कल 158 रन बनाए बड़ी मुश्किल से, मतलब ओ माय गॉड, इतना एफर्ट लगा लगा कर 158 for 7, जिसमें कि श्रेयस अय्यर टॉप स्कोर 18, नॉट आउट ऑफ 49 बॉल्स, कैप्टन्स इनिंग्स खेली, वेरी वेल डन. बट देन इंग्लैंड चेज दैट 158 डाउन विद 9 विकेट्स टू स्पेयर इन 13.5 ओवर्स. मतलब वाओ, उफ, 37 बॉल्स टू स्पेयर बाय 9 विकेट्स. इंडिया इंग्लैंड वन that fourth T20, they now lead 3-0. And of course, as expected, lots of brickbats for Gautam Gambhir and company. Shreyas Iyer, aage kya kar rahe hai, bhai? Surya Kumar Yadav ko, were they very, very, a bit too soon in, you know, knocking him out of the team? Chodo, captaincy to gayi haath se, lekin team se hi nikal diya. And it of course proves the point ki yaar, kitne indispensable hai. Is team se Jasprit Bumrah aur Hardik Pandya ko nikal do, bas, gayi. खैर सीरीज आवन जावन है. द नेक्स्ट T20 सीरीज गोना बी अगेंस्ट जिम्बाब्वे स्टार्टिंग ऑन द 23rd एंड देयर इज नो ब्रेक फॉर द इंडियन टीम. या दो तीन दिन की छुट्टी, उसके बाद इमीडिएटली ये सीरीज शुरू हो जाएगी. क्या लग रहा है आपको? आई थिंक आई एम गोना पुट अ पोल अप ऑन दिस टॉपिक ऑन आवर इंस्टा पेज 106.2 बिग एफएम. दैट्स आवर इंस्टा हैंडल 106.2 बिग एफएम.
0: बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 9:10
1: 6.2 The Beat of Bollywood

0: नमस्कार 14 मिनट एट द बिजनेस एंड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप एंड ऑन द फील्ड तो सारा एक्शन हो ही रहा है लेकिन ऑफ द फील्ड ऑल्सो स्पेशली अमंग द फैंस इट्स गेटिंग क्वाइट क्रेजी
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
0: वीकेंड का प्लान पूरा का पूरा सेट है देयर इज नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड हैपनिंग संडे मॉर्निंग एट 1 एएम यानी कि सैटरडे रात 1 बजे का प्लान आप बना लीजिए बट ऑफ द फील्ड यू नो दैट एंटायर रोइंग वाला जो एक यू नो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया नॉर्वे ने ऑल द सी ऑफ रेड एंड देन दे डू अ Who, which is the drum beat. एक बंदा करता है एंड देन दे प्रिटेंड दैट देयर इन दिस ह्यूज वाइकिंग बोट एंड देन दे रोइंग इन सपोर्ट ऑफ द फुटबॉल फैंस इट इज क्वाइट अमेजिंग बट देयर इज वन नॉर्वेजियन फैन जो हु इंसिस्ट के भाई कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं रोइंग नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा एंड फाइनली समबडी आस्क्ड हिम कि भाई क्या है आपकी योर इमेज इज गोइंग वायरल योर एंटायर कंट्री इज रोइंग आप चप्पू क्यों नहीं चला रहे भाई तो वो हिस्टोरिकल हो गया कहता है कि हिस्टोरिकली क्या है ना कि वाइकिंग बोट्स वी यूज टू सेल हम लोग चप्पू चलाते नहीं थे सो दिस इज हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट एंड आई बिलीव इन हिस्ट्री इसलिए मैं चप्पू नहीं चलाऊंगा तो नहीं चलाऊंगा एक्सक्यूज मी दिस इज ऑल अ बिट ऑफ फन एंड गेम्स राइट आई मीन थोड़ा गेट इन द मोमेंट राइट रीड द रूम अ बिट बट दिस गाइज लाइक नहीं नहीं एंड इन हिज रिफ्यूजल ही हैज बिकम वायरल सो आप जानते हैं कान ऐसे पकड़ोगे वैसे पकड़ो एट द एंड ऑफ द डे बींग वायरल इज वॉट एक्चुअली मैटर्स राइट सो मिशन अकम्प्लिश्ड ऊंचा लंबा कद फॉरएवर फ्रॉम वेलकम टू जंगल कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल और देखो आज फ्राइडे है एंड दैट इज व्हाई वी ऑल अ बिट रिलैक्स्ड राइट जस्ट फ्यू मोर आवर्स एट वर्क उसके बाद दो दिन वीकेंड के इसलिए मैं आपको एक और मौका दे रहा हूं टू गेट योर एंट्रीज इन राइट कुछ देर में कमिंग अप द स्पेल बैटल इन द बिग समर सरप्राइजेस
1: पार्टिसिपेट इन द स्पेल बैटल कॉन्टेस्ट एंड विन अ फैमिली स्टेकेशन Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
0: देखो तीन शब्द मैं आपसे पूछने वाला हूँ थ्री इंग्लिश वर्ड्स इफ यू आर एबल टू गिव मी मोर स्पेलिंग्स करेक्ट स्पेलिंग्स इन द अदर पर्सन इन कॉन्फ्रेंस देन योर नेम गोज इनटू द ड्रॉ टू विन दिस अनमिसेबल स्टेकेशन एट द रिक्सॉस अलमाइरेड इन रसल खेमा आज सुबह का ये डेफिनेटली ऑफिशियली आखिरी मौका है टू व्हाट्सएप योर एंट्रीज BSS स्पेस अपना नाम भेजो 054-309-1062 पर एक बार फिर 054-309-1062

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: With Big Ticket this summer, every ticket could spin big.
4: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
3: Our new big spin game could land you up to 1 million dirhams.
4: And 5 consolation prize winners of 100,000 dirham each.
3: Plus weekly cash e-draws all through the month.
4: Summer's hottest prizes await.
3: Buy now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
6: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
9: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
10: बर्फ नहीं, आजकल तो लू चल रही है. कल सुनते कि 47.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था इन सर्टेन एरियाज ऑफ अलेन. टेम्परेचर आज जाएगा 41 डिग्री सेल्सियस तक बाय मिड डे. दैट्स व्हाट द एनसीएम इज प्रिडिक्टिंग. इट्स 36 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. ह्यूमिडिटी एट 58%. विंड्स ब्लोइंग एट 19 किलोमीटर पर आवर. हाईज ऑफ 37, लोज ऑफ 33 डिग्री right now.
9: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: He is Punjab, but let's ask Mr. Rajesh where he is from. Hello.
1: Hi, hello, Mr. Seth. Good morning.
0: Mr. Rajesh, आप हर एक को ऐसा मिस्टर करके बोलते हो या सिर्फ I am the lucky one?
1: Oh, it's a good way of giving respect to
0: yes,
1: someone. You know,
0: I completely agree. I am not used to respect at all. That's my problem, not yours. but Rajesh, कहाँ से आप क्या काम करते हैं?
1: I am into supply chain. I am from India, Rajasthan.
0: Very good. Where in Rajasthan?
1: Jaipur.
0: Jaipur. All right. Mera sasural is from Kota. I've got Santosh also in conference with us. Santosh, kai mardos?
2: Kaisa kai bhao, Sid bhao.
0: Ekdam barai. What did you have for breakfast, Santosh?
2: Fruits. I've been doing the same for 25 years.
0: Fruits? Only fruits?
2: Only fruits.
0: No fruits milk, nothing, no protein?
2: No, nothing.
0: Do you have a gym trainer? Does he have an opinion about this or...
2: No, just in good shape, so that's good.
0: Naturally blessed. My God, Santosh. Chali, let's see how blessed you are when it comes to spelling. Let's get down to business. You guys are talking to me because of the spell battle contest, which we are going to play. All right, I'm going to give you 3 words in total. If you think that you have in words ki spelling, then you have to use your name ko buzzer ke tarah use karna hai. So Santosh, in case you think you know the answer, you got to say Big Santosh. And the same applies to Rajesh. Big Rajesh. Are you guys ready?
2: Okay. Yeah.
0: Sure. एक बजर टेस्ट कर लें क्या? On the count of three. Ready? In 3, 2, 1, go.
2: Big Rajesh.
0: हाँ संतोष.
2: अच्छा.
0: Why not Mantosh?
2: Yeah, no, I thought you were going to give me a word. Yeah, right.
0: That's why I do the buzzer. This is just a buzzer test, okay? But you got to be a bit quicker on the buzzer, okay? 3 words, best of 3. जिसने 3 में से 2 के जवाब दिए, उनका नाम ड्रॉ में चला जाएगा. So, are you guys ready?
2: Ready.
0: The first word. Who can spell Caribbean?
2: Big Rajesh. Santosh.
0: Big Rajesh. बोलिए. Rajesh. अरे Google search मत करो.
2: Big Rajesh.
0: हाँ बोलो.
2: Big Rajesh. CARIBBEAN.
0: Correct answer. क्या बात है? सच बताओ Rajesh. क्या आपने Google किया था?
2: नहीं सर, ये वर्ड तो हम लोग यूज करते रहते हैं बिकॉज आई लव क्रिकेट एंड कैरेबियन क्रिकेटर्स आर देयर, यू नो, वेस्ट इंडियन.
0: मुझे लग रहा है 3-4 लोग साइड में अपने खड़े कर रखे हैं फोन के साथ तैनात.
2: नहीं सर, आई एम इनटू द कार राइड.
0: अगर आपने बोल भी दिया मैं आपको डिस्क्वालीफाई मत नहीं करूंगा. डोंट टेक टच.
2: गाड़ी बीच में रोक के रखा है मैंने.
0: वेरी गुड, वेरी गुड. यू नो दैट्स हाउ मच वी लव अ स्टेकेशन एंड दैट्स व्हाट यू स्टैंड टू विन. ओके, सो 1-0 इन फेवर ऑफ राजेश. संतोष, बक अप. ऑलराइट,
2: ओके.
0: The next word is, who can spell... कौन सा वर्ड दूं यार आपको मैं? Who can spell... exhilarating?
2: Big Santosh.
0: Big Santosh.
2: EXHILIRATING.
0: अरे क्या बात है यार? That is 1-1, यानी कि अब tiebreaker question का... अब मौका आ गया है. Whoever gets this right gets their name into the draw for this wonderful staycation at the Rixos Almirid. Are you guys ready?
2: Ready.
3: Ready.
0: जब आप जाएंगे इस staycation में, आपका स्वागत करेगा एक who can spell concierge.
2: Big Santosh.
0: Big Santosh. बोलिए.
2: CONCIERG.
0: Whoa, that is straight out of the stadium. Something that the cricketers, Indian wale, could not do last evening had Santosh has really knocked it out of the park. Yeah, last moment pe.
1: Congratulations, Santosh.
0: Arre kya baat hai, Rajesh. That is the spirit, yeah. That's the spirit. Friday ki specially aapko aisi spirit dikhani chahiye. But Rajesh, very, very well played. Aapne achhi shuruaat ki. We could really end the innings on the right note. But keep WhatsApping, BSS space your name, okay? Plenty more opportunities.
1: There is always the next time.
0: There is always. There is always.
2: Yeah, yeah.
0: Mr. And Rajesh.
2: Thank you, Rajesh. I am also in logistics, so...
0: Oh wow, battle of the logistics.
1: Thank you.
0: You're right here.
1: Thank you, and both have a wonderful weekend.
0: Thank you, Rajesh. Yeah, have a wonderful you too, weekend. Man. You too. And Santosh, now Mantosh, how are you feeling? How badly do you need this staycation? Your name goes into the draw to win this wonderful staycation at the Rixos Almirid in Russell Khema. Saath mein on the spot, aapne jeet liye hain 2 movie tickets and an F&B voucher. Congratulations!
2: Awesome. Just what I needed.
0: Kitni mehnat ki aapne is pichle 2-3 mahino mein, bataiye.
2: स्पेल भी जीत ली.
0: नहीं, अरे काम पे भाई, कि कितना स्टेकेशन स्पेल.
2: नहीं, काम पे तो मेहनत. अरे इट्स बीन फन बिकॉज़
3: As much as I hate to say this on air, the situation around us in this region is actually good for logistics.
0: Especially air
3: particularly for air freight. So it's been good. Yeah, can't complain.
0: वाह वाह क्या बात है संतोष, बहुत जज कर रहे हैं लोग आपको इस वक्त, ये बात जो
3: I know बहुत गालियां पड़ने वाली है
0: बट चलो यार congratulations.
3: गंदा
0: है पर धंधा है भाई, मतलब वो कहते हैं ना कि सही बंदे गलत धंधे या उसका ऑपोजिट गलत
3: हो एक,
0: बट congratulations यार, वी सो हैप्पी फॉर यू दैट यू वन सो मेनी थिंग्स ऑन द स्पॉट इन द बिग समर सरप्राइजेस, प्लस योर नेम हैज गॉन टू ड्रॉ, सो वी ऑल गॉट आवर फिंगर्स क्रॉस्ड दैट जब ड्रॉ होगा आपका नाम अगर निकला यू विल विन दिस वंडरफुल स्टेकेशन. थैंक यू सो मच,
3: लुक फॉरवर्ड टू
0: इट, एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंजॉय योर वीकेंड. या
3: Thanks, cheers,
0: that is संतोष हमारे आज के विनर हैं, ड्रॉ एंट्रेंट हैं. आप भी भाई मैसेज करते रहो, करते क्या पता कब नंबर आपका लग जाए. बिग समर सरप्राइजेस बीन मेड पॉसिबल बाय आर प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सॉस अलमारी रसल खेमा. ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि अब मंडे सुबह एक बार फिर से हम लोग खेलेंगे. आप जानते हैं व्हेन द वीक टर्न्स द गेम ऑल्सो चेंजेस, इट्स गोना बी अ ब्रांड न्यू गेम दैट वी गोना कम अप विद फॉर यू टू गेट योर नेम इनटू द ड्रॉ एंड विन दिस वंडरफुल स्टेकेशन, ऑल द विन ऑन द स्पॉट प्राइजेस एज वेल, मूवी टिकट्स, F&B vouchers. तो क्या करना है आपको, WhatsApp करते रहो जस्ट लाइक संतोष एंड राजेश डिड. यू गॉट टाइप आउट BSS फॉर बिग समर सरप्राइजेस, BSS स्पेस योर नेम एंड कीप WhatsApping दैट टू 0543091062.
4: गुलाबी साड़ी आणि लाली
0: संजू राठोड
4: दिसते मी भारी
0: विथ साड़ी फ्रॉम धमाल 4 कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. कीप इट लॉक, दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.

0: of Bollywood.
1: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: Thinking about looking and feeling your best? At Zulekha Hospital, our aesthetic and plastic surgery specialists deliver discreet, world-class care in facial refinement, body contouring, and cosmetic enhancement using advanced techniques designed to enhance your natural features with precision and balance, with results that look natural and feel like you. Zulekha Hospital, where confidence feels natural. Call 600-52442 to book your appointment.
3: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
3: अलरास बोले तो
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
3: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
0: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: It is 9:35 on the clock. Let's take a look सबसे पहले at the capital. अब क्या traffic आया? नहीं, अभी भी नहीं है. बस हल्का बुल्का टप को मिलने वाला E11 पर Mafraq Industrial Area going towards Banias. And a bit also further going towards Zayed International Airport in Abu Dhabi. चलते हैं दुबई शारजा की ओर. The usual hotspots heading south going towards Dubai from Sharjah. 311, E11 दोनों arteries पर आपको मिलेगी 5 से 6 मिनट की देर. Then Beirut Street in both directions getting a bit busy right outside Medina Mall. Then there's a bit of congestion at 44 Al Khail Road पर going towards Business Bay from D3. Nothing major, 2-3 minute. And coming back to 311, एक और pocket of traffic आज सुबह से है. And that is Nadal Shiba की तरफ जाता हुआ from International City Phase 2 अलवर का 1 के बाद से ये ट्रैफिक शुरू हो जाता है 2-3 मिनट का.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
6: ए बुड्ढे,
7: नमस्ते.
6: पहले आप आदत कीजिए, आप गुस्सा नहीं होंगे.
7: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए.
6: मैं बात तो बताती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा.
7: नहीं नहीं नहीं, आप तो खामखा डर रही हैं. मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं.
6: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आ रहा है. देखिए,
7: ये गुस्सा नहीं है.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: मैं वापस आऊंगा फिल्म से मस्कारा, द फिल्म दैट्स रियली गेनिंग अ लॉट ऑफ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: ये अभी देता टर्म ना जो स्लीपर हिट सबसे लेटेस्ट वाली यही है। मैं वापस आऊंगा इम्तियाज अली की ये फिल्म एंड स्पेशली नसीरुद्दीन शाह की परफॉर्मेंस। डेफिनेटली देर इज नॉट अ सिंगल नॉन मॉइस्ट आई दैट लीव्स द सिनेमा हॉल। दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट दिस फिल्म। थोड़ा हटके म्यूजिक है ए आर रहमान का एंड वेदांग रैना जो पावर हाउस ऑफ टैलेंट है। अगर आपको देखना है तो यू हैव टू वॉच दिस फिल्म। मैं वापस आऊंगा। दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सेड और मैं वापस आ गया हूँ विद वन ऑफ आवर फेवरेट कॉन्टेस्ट। इट्स कॉल्ड द बिग बॉलीवुड क्विज बिकॉज वी आर द बिग बॉलीवुड। हम टेस्ट करते हैं कि आपकी बॉलीवुड नॉलेज कितनी पक्की है। आज 10th of July इज यू नो द बर्थडे ऑफ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स इन बॉलीवुड, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल डिस्टिंक्ट वॉइसेज इन बॉलीवुड एज वेल, राइट। सो इस डायलॉग को सुनिए। डायलॉग्स लाइक दीज एक्चुअली डिफाइंड द नॉटीज, यानी कि अर्ली 2000s, लेट 90s, इवन लेट 80s, 90s की जो फिल्में थी, आप इंस्टेंटली पहचान जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यू गॉट फिगर आउट कौन से एक्टर की आवाज है ये।
2: रो रही है। बेटियां तो पराया धन होती हैं, उन्हें तो एक ना एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे मनचाहा पति मिला। अब तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना है, तुझे जिंदगी की सारी खुशियां दे दे।
0: कितना डेटेड लगता है ये डायलॉग यार, बट अगर आपने आवाज पहचान ली है कि किसकी बर्थडे है, वन ऑफ द लाइक आई सेड वेरी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर इन द रीसेंट पास्ट, लेकिन हिज कैरेक्टर रोल्स आई काइंड ऑफ डिफाइंड द 90s एंड द अर्ली 2000s, राइट। सो अगर आपने आवाज पहचान ली कौन से एक्टर का आज बर्थडे है, गिव मी अ कॉल, लेट मी नो 800-1062 इज द नंबर, 800-1062 टू विन टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज। Under the revenge say this song's coming up in just a while. This is the big breakfast with me Sid. Good morning.
3: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई हो, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2 the beat of Bollywood. What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
4: Ready, throw! Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
1: The Big Breakfast brought to you by Zuleika Hospital. Your health matters.
5: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
0: Good morning, it's 9:49 on the clock and let's take a look सबसे पहले at the usual suspects. सबसे पहले शुरुआत करते हैं with 311 heading south right after industrial area 15. You'll find a bit of congestion. 4 से 5 मिनट की देर, ज़्यादा कुछ नहीं. Going towards city center Mirdip. Then Al Nada interchange 1 E11 Etihad Road पर going towards Dera. आपको मिलेगी 5 से 6 मिनट की देर. A bit of congestion also Nadar Hamar going towards Alwarka 1 at 311 again. And then 44 पे हल्का बुल्का traffic first going towards Business Bay from D3. And then further south Alkuz 4th पर भी आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है गोइंग साउथ. देन अनयूजुअल ट्रैफिक E611 पर एंड दिस इज हेबराची हेडिंग नॉर्थ. You'll find a bit of congestion going towards Alavir. In case you spot something, 800-1062 is my number.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE. Starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: एंड स्पीकिंग अबाउट धुरंधर, सिर्फ एक ही धुरंधर चीज हुई है हम क्रिकेट फैंस की दुनिया में, कल चौथा T20 भी इंडिया हार गया इंग्लैंड के खिलाफ।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: मोहित विद मी ऑन द फोन लाइन, गुड मॉर्निंग मोहित।
2: गुड मॉर्निंग रिद भाई,
0: क्या क्या आपको लगता है, नहीं मैं बहुत बुरा हूँ यार, क्योंकि क्या आपको लगता है कि इंडियन टीम को क्रिकेट खेलते रहना चाहिए या थोड़े दिन संन्यास ले लेना चाहिए, क्या लगता है?
2: खेलते तो रहना चाहिए, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ, मेरी तो एक ही बात है कि जिस टाइम पे हमको किसी के सामने बोलना होता ना कि भाई इंडिया जीता है, तो उस टाइम पे इंडिया जीतता ही है।
0: अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, वर्ल्ड कप वो छोटे मोटे ये सब मेरे ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ।
2: हाँ, ये नहीं आओ, बस हम इंडिया में, बस जब भी इंडिया पाकिस्तान हुआ, कोई भी हुआ, तो हाँ। भाई हम लोग सपोर्ट करते हैं दिल से।
0: भाई आयरलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश हो गया, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है?
2: क्या कर सकते हैं, चेंजेस भी हुए ना बहुत से फिर।
0: ठीक है यार, वेरी गुड। आप मतलब मेरे को लग रहा है मोहित जो है ना बिल्कुल फ्राइडे मूड में आ गए हैं। ही इज वेरी फॉरगिविंग, ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम हिज वीकेंड।
2: मैं ना कल शाम से वीकेंड के मूड में हूँ, पता नहीं क्यों।
0: नहीं बताओ फिर क्या प्लान किया है, सबके साथ शेयर करो।
2: प्लान तो मैं धमाल का कर रहा था, हाँ, बट देखते हैं अभी क्या होता है।
0: मैंने भी प्लान कर लिया है, मैंने भी कर लिया है यार, मैं भी जाके देखने वाला धमाल, मतलब बहुत मन कर रहा है। हाँ, हो सकता है कि हम साथ में सिनेमा हॉल में हो।
2: लास्ट वीक में उसके पहले मैंने वेलकम टू जंगल किया था, बट नहीं हो पाया, थोड़ा टाइमिंग के इश्यू की वजह से ये सब, और ये गर्मी में कभी कभी जाना भी अच्छा नहीं लगता है।
0: करेक्ट, लेकिन यार एक काम करते हैं हम लोग, इसका उपाय निकालते हैं, क्योंकि जब मुफ्त में कोई टिकट जीतता है ना, तो फिर गर्मी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
2: तो लास्ट टाइम फ्री, मेरे को तो फ्री का पानी में कोई ऑफर करे तो मैं ना नहीं बोलता, लेता हूँ आराम से।
0: वेर आर यू फ्रॉम मोहित?
2: मैं इंडिया गुजरात।
0: मने खबर हती कि आपना वडील मोहित भाई छे, पैसा नहीं बात आई एटले हूँ समझी गयो। Where in Gujarat? Are you from Kathiyawad, Ahmedabad, Surat? Where?
2: Baroda.
0: Emne ko begadi beshiro. Patel rap. Mohit bhai.
2: Yes.
0: अच्छा, मन तो कर नहीं रहा कि आपसे कोई सवाल जवाब मैं पूछूं, लेकिन बताइए, लास्ट टाइम मैंने पूछा था आज कौन से बॉलीवुड एक्टर का बर्थडे है, एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली ही वाज ओनली 33 इयर्स ओल्ड जब उन्होंने 1989 में मैंने प्यार किया में बाबूजी का रोल किया था, उसके बाद वो बाबूजी ही बन के रह गए। तो
2: बाबूजी मैं वही बोलने वाला था अंतर में, हमारे प्यारे बाबूजी आलोकनाथ।
0: नहीं, इतने प्यारे नहीं है, उनकी कर्तव्य से वो ज्यादा प्यारे नहीं है, लेकिन आलोकनाथ करेक्ट आंसर। मारी बात सांभो मोहित भाई, तमे इंडियन टीम को तुम माफ कर दो, लेकिन आलोकनाथ को प्लीज मत करो माफ, ठीक है ना? वीकेंड और नो वीकेंड, चलो बट कांग्रेचुलेशंस, आपने जीते 2 ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज। एंजॉय एंजॉय वडील, ए हेलो हेलो
2: हेलो, कुछ गुजराती बजा दो।
0: अरे नहीं, ये नहीं कर सकूंगा भाई, नौकरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज मोहित, हमारे आज के विनर हैं, एंड डोंट फॉरगेट, रोज सुबह ये मौका आपके पास आता है ऑन द बिग ब्रेकफास्ट टू विन 2 ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज। पति पत्नी और वो दोस्त से हमने वहीं लगाया दिल, दिस इज बिग 106.2।

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 10:09।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: And अभी एक नई चीज शुरू कर रहे हैं जिससे जिसके लिए आपका प्यार चाहिए, and that is the Big Binge that starts tomorrow evening. The first episode 7 to 9 PM on a Saturday evening, and then a repeat on Sunday 10 AM to 12 PM. क्या है ना कि वीकेंड बड़ी मुश्किल से मिलता है. 5 दिन मेहनत करो, उसके बाद जाकर 48 घंटे का वीकेंड की छुट्टी मिलती है. उसको दिस टाइम ऑल्सो यू शुड नॉट वेस्ट जस्ट यू नो स्क्रोलिंग थ्रू रिव्यूज एंड आस्किंग योर फ्रेंड्स एक्सेट्रा क्या देखें, कितना देखें, देखें भी कि नहीं देखें. ये सारी की सारी मेहनत इसीलिए मैं आपके लिए करता हूँ. आप तक पहुँचने से पहले इन सब चीज़ों को मुझसे गुजरना, क्योंकि द थिंग इज कि मैं वैसे भी आदतन सब कुछ देखता हूँ. सो वाई नॉट पुट इट टू गुड यूज, एंड दैट गुड यूज इज टू सेव यू बिट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड एनर्जी ओवर द वीकेंड, बिकॉज दैट इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, राइट? सो द बिग बिंज, spoiler alert, the first episode is going to be about Pritam and Pedro, the show that everybody is talking about. Raju Hirani, Rajkumar Hirani ki ye OTT digital debut hai. It stars Veer Hirani, his son, and Arshad Varsi. It's a buddy cop genre. What are the good things? What are the bad things about the show, if any? And what is the final verdict? Should we stream it or skip it? According to me, in my subjective view, you'll get to listen to for the first time, the first episode tomorrow evening, 7 to 9. And then, like I said, repeat on a Sunday, 10 a.m. to 12 p.m. right here on Big 106.2, The Beat of Bollywood. Cocktail 2 se Jag se Laaj, the latest super hit from Pritam Chakraborty, coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.
0: Big 106.2.

0: Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Your holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
4: मॉर्निंग, इट इज 10:14 ऑन द क्लॉक एंड आज 41 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाने के चांसेस, दैट्स व्हाट द एनसीएम हैज प्रेडिक्टेड. इट इज 37 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 54%, विंड्स ब्लोइंग एट 18 किलोमीटर्स पर आवर, हाइज ऑफ 37, लोज ऑफ 33 डिग्री सेल्सियस.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour brought to you by insurancemarket.ae.

0: Alright, and Australian Prime Minister ने कुछ ऐसा अनाउंस कर दिया है जिसको सुनके थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: ये टूर्नामेंट अगर ऑस्ट्रेलिया के तो इंडिया में क्यों खेला जाएगा? Here's what's been announced. The first match, the opening match on the 12th of December of the Big Bash League, जो कि ऑस्ट्रेलिया का IPL है, between the Melbourne Renegades and the Perth Scorchers, that's going to be played in Chennai. हाँ, चेन्नई में पहला गेम होगा. एंड देन ही गोज ऑन टू एक्सप्लेन के क्यों ऐसा होगा. इट्स गोना बी एंटायर वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन कल्चर एंड स्पोर्ट इन इंडिया. इट्स गोना स्ट्रेंथन टाइज. सो दैट इज व्हाई द फर्स्ट गेम इट्स लाइक अ जेस्चर यू नो ऑफ गुडविल. द फर्स्ट गेम ऑफ द बिग बैश गोना बी प्लेड इन चेन्नई. दैट इज द न्यूज दैट वी आर गेटिंग. 12th ऑफ डिसंबर इज द डेट टू वॉच आउट फॉर. आई थिंक ऑस्ट्रेलियन बोर्ड शुड वॉच आउट. इतने फ्लैट पिचेस होते हैं चेन्नई में, ऐसा ना हो कि द प्लेयर्स एक्चुअली गेट यूज्ड टू इट. फ्रॉम कॉकटेल टू माशूका इज कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. आई थिंक इन द लिस्ट ऑफ बॉलीवुड कार सॉन्ग्स दिस इज द लेटेस्ट सुपर हिट. इन टॉकिंग अबाउट कार्स, इफ यू थॉट दैट कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव, देन दिस इज डेफिनेटली गोना पुट अ स्माइल ऑन योर फेस. selfdrive.ae के पास सबसे अफोर्डेबल कार रेंटल्स हैं इन द UAE राइट नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ. बिल्कुल सही सुना आपने, 899 दिरहम्स अ मंथ. एट दिस प्राइस पेइंग मोर जस्ट not make sense. No ownership, no long-term commitment, no stress. Just pick your car and drive. Search selfdrive.ae or download the app now. Self Drive, your car, your price, your way.

0: The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Henna Speedy Easy Hair Color. Listen to her every day.
1: Mugembo! खुश हुआ।
2: हाय मानसी,
3: कितना अच्छा लगता है ना अपना ही नाम बार बार लेना। मैं चाहती हूँ कि लोग लें, बट आज हम दोनों ही लेंगे एक दूसरे का नाम।
2: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे नाम और आपका नाम एक सेम है, और मैं अपना ही नाम बोल रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा अटपटा भी लगा।
3: क्यों अटपटा लग रहा है? मतलब देखो यार, बाय डिफॉल्ट अब नाम मानसी है तो बहुत सुंदर होगी तुम भी, है ना। फिलहाल मानसी जी आपको खिलाते हैं 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम है ये। क्या शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो क्या?
2: मैं अभी गुरुजी के आश्रम में आई हूँ और वहाँ पे लगी भी थोड़ा सा डिले हुआ है सत्संग, तो मुझे टाइम मिल गया।
3: ये देखो सत्संग से पहले 5 सेकंड रूल खेल रही है, ये पक्का मानसी है, ये 100% मानसी है। चलो जी आपको मिलेंगे 5 सेकंड। 3 चीजें जो आपको लोगों के बारे में अच्छी नहीं लगती।
2: कभी कभी रूड नेचर, कभी एंग्री होना, और कभी किसी बात से नाराज होता है, हो जाते हैं। और कभी खाना,
3: ये देखो फटाफट, कभी खाना क्या
2: खाना नहीं खिलाते, कभी इनवाइट करते हैं।
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: It's 10:26 on the clock and काफी well behaved traffic लग रहा है, जो भी usual hotspots पर भी traffic नजर नहीं आ रहा भाई। 3:11:11 is also quite smooth. I can't believe my eyes actually. I mean, is this actually true? And then 6:11 पे थोड़ा बहुत traffic in the opposite direction, यानी कि here Barashi is heading north, you'll find a bit of traffic going towards Shisha Park. इसके अलावा there's nothing to report. Yeah, in case you spot something, और आपका reaction है कि भाई Sid क्या बात कर रहा है तो सही traffic, तो call करो 800-1062 पर।
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE. Start from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
5: Brother,

0: पिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मां कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

0: कल्चरल वैल्यूज ऑफ कोर्स 100% ओरिजिनल होना चाहिए भाई, नकल में अकल में अगर आप विश्वास करते हो तो प्लीज स्टे अवे. कॉपीराइट फ्री म्यूजिक भी होना चाहिए एंड यू नीड टू इंक्लूड द वीडियो प्लस अ ब्रीफ कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन. जस्ट सर्च फॉर बुर्ज खलीफा ओपन कॉल एंड यू फाइंड ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी इज सिड एंड डोंट फॉरगेट व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस, insurancemarket.ae आर हु यू हैव टू ट्रस्ट. दे हैव 30,000 गूगल रिव्यूज, 4.8 स्टार रेटिंग, बिल्ट इन द UAE, ट्रस्टेड अक्रॉस द UAE. एवरी रिव्यू इज अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट, एवरी पॉलिसी अ प्रॉमिस केप्ट. insurancemarket.ae.
1: Big 106.2. Yeah!

0: Hollywood. Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
2: Let's start with the capital, Abu Dhabi. Mein aapko traffic milega. And कहाँ मिलेगा E30 पर मुसफ़ा इंडस्ट्रियल के आसपास आपको ट्रैफिक मिलेगा गोइंग टूवर्ड्स रबदान. सो दैट इज द ओनली पीस ऑफ न्यूज़ आई हैव व्हेन इट कम्स टू अबू धाबी ट्रैफिक. इन फैक्ट ट्रैफिक एनीवेयर इन द यूएई कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा. सडनली एवरीथिंग इज बिकम क्वाइट ठंडा ट्रैफिक वाइज. सो एक्सेप्ट 311 पे हेडिंग साउथ गोइंग टूवर्ड्स दुबई यू विल फाइंड 2-3 मिनट की देर. एंड देन देयर इज अ बिट ऑफ कंजेशन एट D93 आल्सो. ऑल ऑफ अ सडन दिस इज हेडिंग वेस्ट. यू विल फाइंड अलनादा स्ट्रीट पे थोड़ा बहुत कंजेशन. एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी एब्सोल्युटली स्मूथ फ्लोइंग.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: जब तक आजकल फिल्में सिनेमा हॉल्स में डोंट रिलीज फॉर टू मच तक, फटाफट वो आ जाती है ओटीटी पर. ऐसे कुछ हो रहा है आज, पति पत्नी और वो दो कमिंग आउट नेटफ्लिक्स पर.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: हालांकि मैंने इस फिल्म को सिनेमा हॉल में नहीं देखा, उड़ती उड़ती तारीफ जरूर मिली है पति पत्नी और वो दो नेटफ्लिक्स पर. एक और ऑप्शन बड़ा धमाकेदार, 2.5 किलो से भी ज्यादा का ऑप्शन आपके पास है, एंड दैट इज सनी देओल अक्षय खन्ना कोर्ट रूम ड्रामा इक्का इज आउट ऑन नेटफ्लिक्स एज वेल. सो इफ यू आर गिवन अ चॉइस बिटवीन दीज टू, which one would you watch first? I'm going to put up a poll on our Insta 106.2 Big FM. Follow कीजिए if you don't, because बहुत amazing चीजें वहाँ पर भी आपको मिलती हैं in terms of entertainment, right? So Ikka versus पति पत्नी और वो दो option on Netflix. And then of course cinema halls में धमाल 4 तो आ ही रही है. धमाल 4 is that franchise जिसमें वो जो है ना, that entire genre that Bollywood has brought के घर पे दिमाग छोड़ के जाओ वाला. If you really need to kind of relax a bit in cinema hall, this might be the movie for you. धमाल 4 जाकर मेरा तो plan है देखने का over the weekend. आप बताइए. एक और चीज आपको करनी है, cinema से जुड़ी है but not really cinema. Toy Story 5 आपने देखी कि नहीं? नहीं देखी तो पिज्जा खा लो. Papa John's and Toy Story 5 pizzas have landed, bringing movie inspired flavors to your next meal. You can try the Space Ranger Ronnie loaded with double pepperoni for a bold meaty bite. Round up your appetite with the Sheriff's Roundup topped with barbecue chicken and onions. Reach for the pie and enjoy the delicious combo of Italian sausage and banana peppers. Order any two or more Papa John's and Toy Story 5 pizzas for just 25 dirhams each and get your hands on a collectible with your qualifying order while stocks last. Better ingredients, better pizza. Papa John's, order now. By the way, Aryan Khan got mobbed last evening. Batata hun kuch der mein kya hua exactly.

0: Alright, so here's what happened last evening. It was Raghav Juyal's birthday party. Raghav Juyal, जिनका एक कजिन फिल्म आ रही है कि भाई तेरा हीरो है. Looks quite interesting. हाँ, so coming back to the party. Party में आर्यन खान थे. आर्यन खान जब पार्टी से निकले तो वहां पर लोगों ने उनको घेराव कर दिया. The kind of totally mobbed him. Total star power.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: चलो, it's time for me to say goodbye to you. It's 10:50 on the clock. And लेकिन जाते जाते एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन यार. आई मीन, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस इन दुबई. ताज दुबई की मैं बात कर रहा हूँ. गेट फोर इनक्रेडिबल डाइनिंग एक्सपीरियंसेस अंडर वन रूफ एट ताज दुबई. मिस टेस, ट्री हाउस, बॉम्बे ब्रासरी एंड द एलोक्वेंट एलिफेंट. एक से बढ़ के एक. स्किन द ब्रेथ टेकिंग दुबई स्काईलाइन व्यूज एंड वाइब्रेंट नाइट लाइफ एट ट्री हाउस. इंडल्ज इन बोल्ड एशियन फ्लेवर्स मिस टेस पे. कंटेम्प्रेरी इंडियन क्विजीन बॉम्बे ब्रासरी. कैच अप विद फ्रेंड्स. एंजॉय योर फेवरेट बेवरेजेस एट द एलोक्वेंट एलिफेंट. दैट्स माय फेवरेट. डोंट मिस द आफ्टर डार्क ब्रंच एट मिस टेस एवरी सैटरडे. यानी कि कल शाम 7 से 10:30. ऑन दैट अमेजिंग नोट, आई एम गोना बी टेकिंग योर लीव. डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स. वी आर 106.2 बिग एफएम. 106.2 Big FM, वहां पर फॉलो कीजिए फॉर ऑल द बिहाइंड द सीन्स एक्शन. एंड आई एम सिट सेट, SIDSETH. आई एम सी यू ऑन मंडे ऑन द बिग ब्रेकफास्ट. रिवाइज्ड टाइमिंग आपको पता है, इट्स बीन वन वीक सिंस वी हैव चेंज्ड द टाइमिंग. 7 to 11 इंस्टेड ऑफ 6 to 10. लेकिन कल शाम को एक बार फिर आपको मिलने वाला हूं. 7 to 9 PM tomorrow evening and then repeat from 10 AM to 12 PM. The Big Binge पे हम बात करेंगे प्रीतम एंड पेड्रो की. Then till then, enjoy the rest of your Friday. Bye bye.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद्ध, सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 10 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Mix, brought to you by InsuranceMarket.ae.
2: InsuranceMarket.ae.
1: Big 106.2. That's My Song by E

0: Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
3: बिल्कुल नहीं छूटेगा क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 PM। क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
4: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 PM with Zora. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए GoChat कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood।

0: Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Mix. Brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya?
1: Hum kar hi nahi sakte, chaho bhi to nahi kar sakte.
2: Bataiye mujhe ki ye Vijay Singh jinki main baat kar rahi hoon, ye asal mein kaun hai?
3: ये हैं अपने बॉबी डियोल।
2: अपने बॉबी, अरे मतलब गली में रहते ना, पीछे नुक्कड़ पे जो रहते हैं अपने बॉबी डियोल।
3: हाँ जी।
2: Are you a fan of his?
3: No,
2: no. What?
3: Yeah, I do like some of his performances. Yeah.
2: Recently, you know that he's made a very, very good comeback. Yeah, सबसे ज़्यादा impactful, strong comeback इन्हीं का रहा है recent times, I think.
3: हाँ
2: ये देखी थी आपने Animal? अच्छी लगी थी आपको?
3: मिसोजिनिस्टिक लगी।
2: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, क्योंकि ये मुझे लगता है मैं अकेली हूँ इस चीज में। ही डिड अ वेरी गुड जॉब। अच्छा मुझे जल्दी से एक बात बताओ, ये एनिमल मूवी में इनका कोई डायलॉग सुना दो मुझे।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून। 1:08 हो चुके हैं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पाँच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
4: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
4: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: बहुत ही गर्म मौसम, 37 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी काफी इन कंट्रोल एट 51% राइट नाउ। ये कंट्रोल है ऑनेस्टली कंपेयर टू द 63 जो कल था। हाई इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, लोज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप डाउन टू अबाउट 33 लेटर टुनाइट।
4: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurersmarket.ie.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: 1:19 on the big clock. Good afternoon. Hanji, the Big Mix. My name is Zohra with you until 5. Filhal is ghante hum khel rahe hain The Big Bollywood Undercover. And in this game, I give you 4 kuch aise ulte pulte se clues. And all you need to do is try and guess ki aaj main kis celebrity ki baat kar rahi hoon. Ye jo celebrity hai, matlab inka naam sunke achanak se, I don't know why ladkiyan blush karne lag जाती है. चलो मैंने एक एक्स्ट्रा क्लू दे दिया. आई नो ये क्लू कुछ ज्यादा यूजफुल नहीं था, बट व्हेन यू हियर द अदर क्लूज यू विल नो एग्जैक्टली हु आई एम टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई दिस क्लू इज यूजफुल. ठीक है, लेट्स गेट इनटू द क्लूज. क्लू नंबर 1, हिज एक्चुअल नेम वाज फरहान, बट ही लेटर चेंज्ड इट बिफोर हिज डेब्यू. है ना, फरहान उनका एक्चुअल नेम था. ही वर्कड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर द मूवी राज बिफोर इवेंचुअली स्टारिंग इन इट्स सीक्वल हिमसेल्फ. क्लू नंबर 3, हिमेश रेशमिया को इनकी आवाज की तरह पहचाना जाता है. ही इज नोन टू बी द वॉइस ऑफ दिस एक्टर. सारे के सारे सॉन्ग्स टुगेदर, ऑल ऑफ देम सुपर सुपर हिट्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही इज एसोसिएटेड विद द भट्ट फैमिली. इनफैक्ट आलिया भट्ट इनकी कजिन है. मैं किसकी बात कर रही हूँ? हिज एक्चुअल नेम इज फरहान, लेटर चेंज्ड इट टू XYZ बिफोर हिज डेब्यू. ही इज वर्कड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर द मूवी राज बिफोर इवेंचुअली स्टारिंग इन द सीक्वल हिमसेल्फ. हिमेश रेशमिया इज नोन टू बी द वॉइस ऑफ दिस एक्टर विद बोथ ऑफ देम हैविंग ऑल हिट सॉन्ग्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, he is associated with the Bhatt family and Alia Bhatt to inki cousin hai. Kis actor ki main baat kar rahi hun? Aisa naam jin kya matlab aise imagine karke hi hum aise blush karne lag jate hain. If you think you know the right answer, call me 800-1062 pe. That's our toll free number, 800-1062. Tell me which actor am I talking about jiska naam sunke yaar ye sari ladkiyan blush karti hai. 800-1062.

0: 92. The beat of Bollywood. Early in the morning. The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Henna Speedy Easy Hair Color. Listen to her every day.
1: Mugembo! Khush hua!
2: Subhana, we play this game. It's called the 5-second rule. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. Teen cheeze batani hai 5 seconds ke andar. All the very best.
3: 5-second rule.
4: Oh, yeah.
2: Quickly name 3 animals that you can keep at home as pets.
5: A cat, dog, rooster.
2: Whoa!
5: Turtle.
2: Very nice. 3 things about your husband. If you could change, you will change.
5: Annoying behavior, casual attitude. Not too much of thinking.
2: But not bad, Bhavna. You played really, really well for the first time. Most of your answers, except the husband ki habits, were on time. Bang on 5 seconds. Mein. I hope you had fun.
5: Thank you so much.
2: Bye.
5: Likewise, have a good day.
2: You too. Bye.
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
2: देखो फ्राइडे आफ्टरनून सो बड़ा ही चिल सीन होता है ऑन द रोड राइट नाउ. ज्यादा ट्रैफिक मुझे दिख नहीं रहा है. E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड लेकर अगर आप जा रहे हैं तो बहुत ही लाइट ट्रैफिक आपको मिलेगा. तवार 4 से लेके S102 शारजा रिंग रोड तक अबाउट अ 7 मिनट डिले ऑन दैट रोड इज एक्सपेक्टेड. उसके अलावा थोड़ा सा लाइट ट्रैफिक आपको मिल जाएगा E11 अगर आप फेस्टिवल सिटी की तरफ से जा रहे हैं राशिद स्ट्रीट की तरफ तो वहां पे आपको मिलेगा 8 मिनट का डिले लाइट से मॉडरेट ट्रैफिक. DE9 एयरपोर्ट स्ट्रीट पे थोड़ा सा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है क्योंकि D62 नादल हमार से होते हुए गोइंग टूवर्ड्स एयरपोर्ट रोड एक कार एक्सीडेंट हुआ है एट दैट जंक्शन कॉजिंग अबाउट अ 10 मिनट डिले. एनी अदर अपडेट आप हमें बता सकते हैं ऑन आवर व्हाट्सएप व्हिच इज 0543091062. दिस इज द बिग मिक्स विद मी ज़ोरा. गुड आफ्टरनून.
0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
6: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो.
7: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूं.
0: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा। 106.2 The Beat of Bollywood.

धुरंधर द रिवेंज से वारी जावा ऑन द बिग मिक्स. फिलहाल इट इज 147 ऑन द बिग क्लॉक हेडिंग इनटू द सेकंड आवर ऑफ द शो. दूसरे घंटे में ऑन द बिग बॉलीवुड टी, आज क्या हो रहा है बॉलीवुड में ताजा, इसके बारे में बात करेंगे. इन द मीन टाइम मेक श्योर इंस्टाग्राम पे जाओ और फॉलो दबाओ 106.2 बिग एफएम, मेक योर फॉलोअर्स ओवर देयर एंड शो सम लव. अब मिलेंगे अगले घंटे, व्हिच इज 2 PM ऑन द बिग मिक्स विद मी ज़ारा. अंटिल 5, गुड आफ्टरनून.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर द बिग मिक्स ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae
1: insurancemarket.ae
0: बिग 106.2 दैट्स माय सॉन्ग बाय ई एंड

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
2: बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून, इट्स 2:06 ऑन द बिग क्लॉक।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. This summer, there are surprises all across Dubai, waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 37 डिग्री सेल्सियस बाहर, काफी ज्यादा गर्मी, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़कर 58% पर पहुंच चुकी है। वी आर होपिंग द टेम्परेचर विल नॉट गो एनी हायर, बट इट विल गो लोअर। 33 तक एक्सपेक्टेड है फॉर इट टू ड्रॉप लेटर दिस इवनिंग।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
4: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
5: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
0: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
2: ट्रैफिक का हाल फिलहाल लव फ्राइडेज यार, ट्रैफिक होता ही नहीं है कहीं पर भी। E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड बहुत ही हल्का फुल्का ट्रैफिक आपको मिलेगा। दिस इज स्पेशली इफ यू आर अराउंड S102 शारजा रिंग रोड। उसके अलावा लाइट ट्रैफिक आपको मिल जाएगा खबेसी स्ट्रीट, E11 इतिहाद स्ट्रीट हेडिंग टुवर्ड्स नाहदा। इनफैक्ट नाहदा फर्स्ट के पास एक छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ है अराउंड अल अहली क्लब, कॉजिंग अबाउट अ 5 to 7 minute डिले। उसके अलावा द यूजुअल ट्रैफिक, D83 लाइट ट्रैफिक है फेस्टिवल सिटी के पास, लाइट ट्रैफिक अलखेल रोड पे अराउंड D3 का एग्जिट, एंड एक स्मॉल कार एक्सीडेंट अराउंड D92 वसल स्ट्रीट। Any other updates, you can let us know on our WhatsApp 054-309-1062.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

पहले पहले मैं ये गा के ताने मारती थी बाकी आंटियों को, अब ऐसे लगता है जब भी कोई ये गाना गा रहा हो तो मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट मी कि आंटी जी उठ के डांस कर लो, बिकॉज आई थिंक आई कम इन दैट कैटेगरी नाउ. बट नॉनदलेस इट इज 2:47 ऑन द वेक क्लॉक हेडिंग इनटू द थर्ड आवर ऑफ द शो. थर्ड आवर पे भी बहुत ही बढ़िया आपके लिए एक डिबेट लेकर आऊंगी ऑन व्हाट्स द बिग डील, आज हम किस चीज के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, दैट टू फॉलो इन द नेक्स्ट आवर. इन द मीन टाइम मेक श्योर टू गो फॉलो अस 106.2 बिग एफएम ऑन इंस्टाग्राम, दैट्स अ सोशल मीडिया हैंडल, फॉलो अस, शो अस सम लव. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट आवर. My name is Zohra with you until 5.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 3:06 हो चुके हैं।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: बिल्कुल सही यार, जोहरा के साथ हो आप ऑन द बिग मिक्स। फिलहाल एक बहुत ही बिग सा सरप्राइज आपके लिए ये है कि अगर आप स्टेकेशन के लिए जाना चाहते हो एट द मोस्ट स्टनिंग प्रॉपर्टी, तो वो हम आपके लिए लेकर आए हैं यार। दिस समर बिग 106.2 इज गिविंग यू द अल्टीमेट स्टेकी ऑन बिग समर सरप्राइजेस, प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सो सलमाय रिद, जहां पे आप अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हो एंड यू कैन हैव द बेस्ट पॉसिबल टाइम ऑफ योर लाइफ ओवर देयर। स्पेशली गर्मियों में यू नो you need that one thing that you can do that will make you forget about the heat, that will make you just forget about all the stress, and this exactly is that place. Yeah, you can chill by the pool, you can take some amazing pictures, selfies, कंटेंट बना दो इंस्टाग्राम के लिए, या फिर खाना खा लो वहाँ का जो बढ़िया बढ़िया है। साथ ही साथ एवरी डे यू गेट टू विन डेली प्राइजेस आल्सो यार, दैट इज वर्थ 500 दिरहम्स इंक्लूडिंग मूवी टिकट्स, F&B वाउचर्स एवरी सिंगल डे। ऑल यू गॉट टू डू इज पार्टिसिपेट, ठीक है? सुनते रहना है द बिग ब्रेकफास्ट एंड द बिग थ्रिल, और हमें एंट्रीज अपनी भेजनी है ऑन व्हाट्सएप। 0543091062 नंबर है जहां पे आपको टाइप करके भेजना है BSS space your name, BSS space your name to our WhatsApp 0543091062. This is Big Summer Surprises, presenting sponsor Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos, Almira Durasal Hema, only on Big 106.2.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे। मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड आफ्टरनून, इट्स 4:07 ऑन द बिग क्लॉक।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Chill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 PM to 12 AM on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: Missed your morning buzz?
3: क्या आपको लगता है इंडियन टीम को क्रिकेट खेलते रहना चाहिए या थोड़े दिन संन्यास ले लेना चाहिए? क्या
4: खेलते
3: लगता है?
4: तो रहना चाहिए क्योंकि मैं तो बोलता हूँ, मेरी तो एक ही बात है कि जिस टाइम पे हमको किसी के सामने बोलना होता ना कि भाई इंडिया जीता है, तो उस टाइम पे इंडिया जीतता ही है।
3: अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, वर्ल्ड कप
4: वो
3: छोटे मोटे ये सब मेरे ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ।
4: हाँ, ये नहीं आओ बस। हम इंडिया में बस जब भी इंडिया पाकिस्तान हुआ, कोई भी हुआ, तो भाई हम लोग सपोर्ट करते हैं दिल से।
3: भाई मेरे आयरलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश हो गया, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है?
4: क्या कर सकते हैं, चेंजेस भी हुए ना बहुत से। फिर मैं ना कल शाम से वीकेंड के मूड में हूँ, पता नहीं क्यों। प्लान तो मैं धमाल का कर रहा था, बट देखते हैं अभी क्या होता है। फ्री मेरे को तो फ्री का पानी में कोई ऑफर कर रहा है तो मैं ना नहीं बोलता, पी लेता हूँ आराम से।
3: वेयर आर यू फ्रॉम मोहित?
4: मैं इंडिया गुजरात।
3: मने खबर हती, मने खबर हती कि आपना वडील मोहित भाई छे, पैसा नहीं बात आई एटले हूँ समझी गयो।
0: Energy and action. Monday to Friday, 7 AM to 11 AM. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
7: 37 degrees Celsius है बाहर, humidity फिलहाल has gone up to 60%. आज लोज जाएंगे 33 तक, it's 4:15 on the big clock.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2.

0: listening to The Beat of Bollywood.
1: बिल्कुल सही यार, मिलेगी सबको ये अपॉर्चुनिटी, मिलेगी गेम खेलने की अपॉर्चुनिटी यार. बहुत ही फन गेम मैं खेलती हूँ. इन द लास्ट आवर द गेम इज कॉल्ड
2: Are you ready for this?
0: Name, place, movie, thing.
1: Yeah. Yes, that's right. We play Name, Place, Movie, Thing in the last hour every single day. आज Name, Place, Movie, Thing खेलने के लिए मेरे साथ on the phone line is Ashita. Hi, how are you? Ashita, hello, hi.
3: Hello.
1: Hi, yes, hello. I can finally hear you. Hi, how are you?
3: I'm good, how are you?
1: Very well, Ashita. You seem like you're already, you know, celebrating the weekend. आपका कोई काम भी नहीं था आज. Are you?
3: नहीं. काम तो था, फ्राइडे इज ऑल लाइक सेकंड हाफ इज द वर्क.
1: मन किसका करता है, काम चलता रहेगा बैकग्राउंड में, हम अपनी मस्ती में.
3: आई एम जस्ट सो लकी दैट यू कॉल्ड नाउ बिकॉज़ आई जस्ट फिनिश्ड वन मीटिंग.
1: शाबाश, देखो मेरी टाइमिंग ही ऐसी है. आई जस्ट नो एंड आई सम रीजन आई हैड दिस फीलिंग आशिता इज गोना बी एबल टू एस दिस गेम. ऐसे पॉजिटिविटी आ रही, कॉन्फिडेंस मिल रहा है मुझे आपकी आवाज से.
3: दैट्स व्हाट
1: आई एम. ओह माय गॉड, लुक एट दैट कॉन्फिडेंस गर्ल, लेट्स गो. चलो आशिता, वेरी सिंपल गेम. बॉलीवुड क्या मतलब, ये एक ट्विस्ट है टू नेम प्लेस एनिमल थिंग. आई एम गोना गिव यू फोर कैटेगरीज एंड वन लेटर. यू हैव टू नेम ईच कैटेगरी विद इन 5 seconds. कूल? चलो. ओके, आर यू बिग ऑन बॉलीवुड?
3: यस.
1: ओके, यू आर बिग ऑन बॉलीवुड. तो आई कैन स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफिकल्ट लेटर, है ना? नहीं नहीं, इजी से स्टार्ट करो मैडम. ओके चलो, वी विल स्टार्ट विद अ रिलेटिवली इजी लेटर. आई विल गिव यू द लेटर डी. डी फॉर डोर, है ना? तो डी से आप मुझे बताओ बॉलीवुड सेलिब्रिटी नेम. गो. वेरी गुड. डी से बॉलीवुड मूवी.
3: दंगल.
1: वेरी गुड. डी से आप बताओ प्लेस.
3: दिल्ली.
1: डी से आप बताओ थिंग. वेरी गुड. हाँ ओके चलो, देखो ये इजी था, सो आई एम नॉट इवन गोइंग टू काउंट दिस राउंड. ओके, नाउ यू वॉर्म्ड अप, यू गॉटन यूज्ड टू इट, लेट्स गो विद द डिफिकल्ट राउंड. ठीक है?
3: नॉट द मैक्सिमम डिफिकल्ट.
1: नॉट ओके, चलो नॉट मैक्सिमम. ओके ओके, आई बी इजी ऑन यू, आई बी इजी. ओके, आई एम गिविंग यू द लेटर, लेटर जे. जे से बताओ बॉलीवुड सेलिब्रिटी नेम. गो. कम ऑन. वेरी गुड, वेरी गुड. लास्ट सेकंड पे बता दिया. अब बताओ बॉलीवुड मूवी का नाम.
3: जवान.
1: जवान, हाँ वेरी गुड. बताओ बताओ बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड तो हो गया. प्लेस.
3: जोधपुर.
1: वेरी गुड. अब बताओ थिंग.
3: जैकेट.
1: भाई साहब. What a queen, Ashita. You proved it. कि मैं सिर्फ बातें नहीं करती हूँ, मैं गेम खेलती हूँ जीतने के लिए. I love it यार. Ashita, क्या करते हो आप?
3: I am a sales accountant working with a developer in Dubai.
1: ये sales will छोड़ो, मैं बोल रही हूँ Bollywood में entry होनी चाहिए आपकी. The confidence, the aura.
3: I feel the same. I should bring some.
1: यार Bollywood छोड़ो, podcast शुरू करो खुद का. इतना कॉन्फिडेंस आपकी आवाज में. टू गुड़िया राशिदा, मजा आ गया आपसे बात करके. चलो, थैंक यू फॉर प्लेइंग, होप यू एंजॉयड एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट फ्राइडे यार. बाय आशिता. लव इट यार, इतने कॉन्फिडेंस के साथ मतलब जब खेलते हैं और जीतते भी हैं वो अलग ही खुशी होती है. स्पेशली अगर वीकेंड पे हो जाए, फ्राइडे हो जाए, तो मतलब दिन ही बन जाता है. इफ यू टू वुड लाइक टू प्ले, मैं हर दिन इस घंटे यही गेम खेलती हूँ, नेम प्लेस मूवी थिंग. बस आपको मुझे कॉल करना है ऑन आवर टोल फ्री नंबर, दैट्स 800-1062.

0: अगर मैं भी शरीफ हुआ था और शराफत से अपनी कभी नहीं बना, जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: वाओ, योर हेयर कलर लुक स्टनिंग।
3: थैंक्स, आई डिड इट मायसेल्फ दिस मॉर्निंग इन 5 मिनट्स।
2: या राइट,
3: नो, इट्स हेना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली। इट्स अमोनिया फ्री एंड एनरिच्ड विद हेना एक्सट्रैक्ट एंड आर्गन ऑयल।
2: रियली?
3: या, एंड विद अ इजी कॉम्ब एप्लीकेटर इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स।
2: आई एम बाइंग इट राइट नाउ।
3: गेट मैक्सिमम ग्रे कवरेज, वाइब्रेंट कलर एंड अ नेचुरल लुकिंग फिनिश विद हेना स्पीडी इजी हेयर कलर मेड इन इटली।
4: 3, 2, 1, and they're off. It's Sharaf DG's exclusive bundle offer. New wheels, big screens. Get a Geely car plus TCL 65-inch TV from 42,999 dirhams. Drive home your new M-Grand or City Ray today. Book now for just 4,999 at Sharaf DG. TNCs apply.
5: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
6: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
1: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।

0: खाम खा डर रही है। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा तो आ रहा है, गुस्सा आ जाएगा,
0: आ रहा है। देखिए ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2 The

0: and win up to 1 million dirhams!
1: Plus 4 weekly e-draw winners!
0: Turn your summer into millions!
1: Buy now at bigticket.ae!
2: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNC's apply.
3: Missed your morning buzz?
4: Yes
3: or no?
5: क्या आपको लगता है कि इंडियन टीम को क्रिकेट खेलते रहना चाहिए या थोड़े दिन संन्यास ले लेना चाहिए? क्या लगता है?
6: खेलते तो रहना चाहिए क्योंकि मैं तो बोलता हूँ, मेरी तो एक ही बात है कि जिस टाइम पे हमको किसी के सामने बोलना होता ना कि भाई इंडिया जीता है, तो उस टाइम पे इंडिया जीतता ही है।
5: अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि जो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, वर्ल्ड कप
6: वो
5: छोटे मोटे ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ।
6: हाँ, ये नहीं आओ बस, ये हम इंडिया में बस जब भी इंडिया पाकिस्तान हुआ, कोई भी हुआ, तो भाई हम लोग सपोर्ट करते हैं दिल से।
5: भाई मेरे आयरलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश हो गया, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है?
6: क्या कर सकते हैं, चेंजेस भी हुए ना बहुत से। फिर मैं ना कल शाम से वीकेंड के मूड में हूँ, पता नहीं क्यों। प्लान तो मैं धमाल का कर रहा था, बट देखते हैं अभी क्या होता है। फ्री मेरे को तो फ्री का पानी में कोई ऑफर कर रहा है तो मैं ना नहीं बोलता, पी लेता हूँ आराम से।
5: वेयर आर यू फ्रॉम मोहित?
6: मैं इंडिया गुजरात।
5: मने खबर हती, मने खबर हती कि आपड़ा वडी मोहित भाई छे, पैसा नी बात आई एटले हूँ समझी गयो।
3: Energy and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
7: ट्रैफिक का हाल फिलहाल E311 लेकर शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर अगर आप जा रहे हो शारजा की तरफ, आपको मिलेगा लाइट से मॉडरेट ट्रैफिक स्टार्टिंग वर्कआउट 1। उसके अलावा कार एक्सीडेंट्स काफी रिपोर्ट हुए हैं। E44 रासलखोर रोड दुबई क्रीक क्रॉस करते हुए आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिल जाएगा बिकॉज ऑफ अ बिग कार एक्सीडेंट दैट्स टेकन प्लेस, अबाउट अ 10 मिनट डिले देयर। एक और कार एक्सीडेंट ऑन द सेम रोड हेडिंग टुवर्ड्स वर्कआउट 1, वहां पे क्रॉसिंग D62 आपको मिलेगा, वहां पे भी 8 से 10 मिनट का डिले। एक और कार एक्सीडेंट हुआ है DIFC के पास अराउंड जाबील सेकंड, बट जस्ट about a 7 to 8 minute delay on that road. Any other update, you can let us know on our WhatsApp 054-309-1062.
3: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: 101.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

Nidhi Jahan with Mind Blowing Mahia on the Big Mix. With that, it's almost 5 p.m. My time to take your leave. Like, and before I leave, make sure to go follow us on our Instagram. That is 106.2 Big FM on Instagram. Uske alawa meri awaaz, mera andaaz bhi agar aapko pasand aaya ho, aap mujhe bhi jaake follow kar sakte ho. Zohra Amin is my handle over there. I will now see you on a Sunday, dopahar 3 baje on the Big Recommends, a brand new show. Make sure to tune in. I bring you the best recommendations from town. Chahe wo khane peene ki jagah ho, चाहे वो यू नो कपड़ों की जगह हो, चाहे कुछ भी हो, द बेस्ट दैट इज इन द यूएई, आई विल ब्रिंग यू ऑल ऑफ दोज रेकमेंडेशंस. सो मेक श्योर टू ट्यून इन 3 बजे ऑन अ संडे, व्हिच इज द बिग रेकमेंड्स. अंटिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.2. दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:06।
1: Bollywood.

इतना अच्छा गाना है ना, सिर्फ बिगाड़ने का मजा ही कुछ और होगा। अगर आपने गैस कर लिया है गाना है कौन सा एंड अगर आप गुनगुना सकते हैं देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल। इट्स टाइम फॉर द कैरियोकी राइट ऑन पिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। फिलहाल ओजी नहीं द रीमेक वर्जन, बट इनकी धर्मपत्नी जो है वो आजकल छाई हुई है। मैं बात कर रही हूँ गोविंदा की।

0: बॉलीवुड ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Wow, your hair color looks stunning.
3: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
2: Yeah, right.
3: No, it's henna speedy easy hair color. It's made in Italy. It's ammonia free and enriched with henna extract and argan oil.
2: Really?
3: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
2: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with henna speedy easy hair color. Made in Italy.
4: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
5: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: Honestly, not big traffic because Friday की शाम है। 15 से 20 मिनट का डिले आपको मिलेगा। मौरिफ टू मोहसिना, इफ यू टेकिंग द शेख मोहम्मद बिन जायद। शेख जायद पे फिलहाल सिर्फ 10 मिनट का डिले है। देर इज स्लो मूविंग ट्रैफिक इफ यू आर अराउंड वर्सान। एनीथिंग एल्स यू'd लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पे।
5: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: मिला नहीं, मिला नहीं। और जमीन भाई पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लो स्लो स्लो।
1: बिग 106.2

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, दिस इज द बिग थ्रिल. मैं हूं मानसी. फ्राइडे की शाम है, क्या करें, बैठे बैठे गाड़ी में कारियोकी करते हैं, गाना गाते हैं, माहौल बनाते हैं. टैलेंट आपका, प्लेटफॉर्म मेरा. एवरी सिंगल इवनिंग आई गिव यू अ चांस टू होस्ट योर ओन कॉन्सर्ट. वी जैम व्हाइल वी आर इन द ट्रैफिक जैम.
0: कारियोकी
1: शाम कारियोकी करने आ चुके हैं फरहान, जो कह रहे हैं कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा सिंगर हूँ. अमेजिंग, राइट फरहान?
2: मेरा नाम शरण है. शरण.
1: अच्छा, तो शरण, सॉरी, वो फरहान शरण आपने मुझे स्पीकर पे रखा था ना, कोई बात नहीं. व्हाट्स इन द नेम, शेक्सपियर ने कहा है. अभी यहाँ पे हम गाना गाने के लिए आए, तो आज शाम आप ही के शरण में है मेरे सारे ऑडियंस इस वक्त. तो आप गाना वाना गाते हैं?
2: थोड़ा थोड़ा गा लेता
1: जो बोलता है थोड़ा थोड़ा, वो काफी काफी गा लेता है. तो मतलब पार्टी वार्टी में आप गा ही लेते हैं?
2: जी जी, वीकेंड में तो ज्यादा रहता है.
1: वीकेंड में ज्यादा रहता है. वीकेंड में सभी का सर माहौल अलग रहता है, और जो नॉन सिंगर्स होते हैं वो भी थोड़ा बहुत गा ही लेते हैं. तो आप कैरियोके करते हो वैसे?
2: कर लेता हूँ.
1: यार आपने बहुत उम्मीदें जो है हम सबकी जगा दी हैं, तो ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए आपका ट्रैक है शरण.
2: जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी बदन है, खुशबू

0: किरण।
1: मजा आ गया, थोड़ा बफर में जो है गाया आपने सर, गाया आपने काफी अच्छा। तो सबसे पहले आपने किसके लिए गाया था, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, याद है वो लड़की?
0: कॉलेज में तो बहुत कंफ्यूजन था मैं।
1: कंफ्यूजन में था मतलब कि हर दूसरी लड़की को कहते थे हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण।
0: पीयूसी में था फर्स्ट ईयर में, ओके, एक लड़की को भी देखा था, उसका नाम था नंदिनी। बाद में सेकंड पीयूसी में आ गया, ऐसा चेंज होता रहता है ना।
1: इस सेकंड ईयर में दूसरी लड़की आ गई थी, थर्ड ईयर में दूसरी आ गई थी, तो अब फाइनल कोई लड़की सेटल किया आपने?
0: फाइनली मेरा शादी हो गया मेरा वाइफ के साथ, लव मैरिज था मेरा,
1: क्योंकि इन्होंने हाँ कह दिया। अच्छा, तो बाकी वो नंदिनी और उसके बाद जो थी उसने मना कर दिया था। बहुत बढ़िया, आई लव द ऑनेस्टी।
0: प्रॉब्लम था मेरा इनिशियली अप्रोच करने का, थोड़ा डरता था, एक्सपीरियंस हो गया जाते जाते, तो बाद में फाइनली
1: रिजेक्ट होते होते मुझमें हिम्मत आ गई, फिर मैं गया तो फिर एक्सेप्टेंस भी मिल गई। बट नॉट बैड। हाँ शरण, आपने बहुत अच्छा गाया ये, एंड आई थिंक योर फ्रेंड्स आर वेरी लकी, क्योंकि आप पार्टी में जाके माहौल बना देते हैं, सो यू डेफिनेटली आर अ गुड सिंगर। थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा था ये गाना अगर बिगड़ जाएगा तो बहुत अंडे टमाटर पड़ेंगे, बट आपने बचा लिया। यू हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वीकेंड एंड थैंक यू सो मच। फिलहाल दिस इज द कारियोकी, एंड इफ यू थिंक कि आप भी शरण की तरह हमारी शरण में आके गा सकते हैं, देन आप भी फोन घुमा सकते हो 800-1062 पर।
2: Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae।

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: All right, Friday है, we are bringing in the weekend. We are also doing karaoke. अगर आप भी अपने अंदर का टैलेंट बाहर निकालना चाहते हैं, from bathroom to, of course, our studios and the rest of the UAE, then just give me a call 800-1062 पे. फिलहाल coming up, break your spar. जवानी तो इश्क होना है. इसी के साथ वी गॉट नेहा कक्कड़ की आवाज विद मिका सिंह, बैक टू बैक रिक्रिएटेड गाने.
2: सावन में लग गई आग, दिल मेरा.
1: वीकेंड वाली फील्स, वैसे बहुत सारी फील्स हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी है, सो गो एंड चेक अस आउट 106.2 बिग एफएम.

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Bringing in the weekend, Mansi. We're also jamming here. It's the karaoke. And every single evening while you're heading home, hum traffic jam mein jam karte hain. मैं आपको देती हूँ कॉन्सर्ट होस्ट करने का मौका. ऑडियंस मेरी, टैलेंट आपका. आ चुके हैं राहुल, अ मैन हु आई एम अज्यूमिंग कैन सिंग एंड आल्सो चार्म विमेन. हाय राहुल.
2: Hey Mansi, how are you?
1: I'm good, how are you?
2: All well.
1: राहुल, बहुत लड़कियाँ आपकी दीवानी रही होंगी ना कॉलेज के टाइम. आई थिंक यू वन ऑफ दोस जो गिटार लेकर बिल्कुल कम बात करने वाला, एक कोने में बैठकर अपनी यू नो दाढ़ी बढ़ा के रहने वाला लड़का होगा कॉलेज में.
2: तो गिटार सीखा था बट वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू फॉलो.
1: लड़के आधे गिटार इसलिए सीखते हैं कि लड़कियां जो है वो थोड़ा बहुत ध्यान दे ना.
2: बट
1: राहुल नाम ही ऐसा है, लड़कियां अपने आप इंप्रेस हो जाती है. राहुल राहुल, सो राहुल व्हाट डू यू
2: डू? जस्ट वर्किंग इन सेल्स.
1: वेरी नाइस. डोंट साउंड हैप्पी. वर्किंग इन सेल्स.
2: Because I have to go back to work now.
1: Now, what are you selling that 5:30-6 बजे आपको काम पे जाना पड़ रहा है?
2: Luxury.
1: That's fun, right? You get to meet people with a lot of money. So it's good to be around people who have money. You know, energy exchange होती है. फिलहाल राहुल गाना वाना गाते हो आप कि नहीं गाते हो?
2: थोड़ा बहुत
1: गाते हो. अभी वैसे बड़ा अच्छा गा के गए हैं जो ट्रैक मैंने प्ले किया था शरण. सो वुड यू लाइक टू सिंग द सेम सॉन्ग और शुड आई प्ले अनदर ट्रैक फॉर यू?
2: द सेम ट्रैक.
1: चलो जी, ये तो सेम ट्रैक करने के लिए तैयार हो गए. तो यहाँ तो कॉम्पिटिशन हो गया बिटवीन शरण हु सैंग प्रिटी वेल. लेट्स सी राहुल आज शाम क्या करते हैं.
0: कारियोकी.
2: जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाथ

ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर

0: इस राहुल के लिए तो आई थिंक लड़कियां लाइन लगा के खड़ी होती होंगी. क्या गाया है, वो भी लिरिक्स याद है पूरे.
1: But honestly, this is my first time in a karaoke. I've never done it.
0: You should do it often. Yeah. Seems like you love this song.
1: It's a nice song, wonderful song.
0: Actually, Shah Rukh's name in the movie was also Rahul. So Rahul, were you this obsessive, one-sided lover ever?
1: No, not at all. I used to have a lot of pressure on my teachers.
0: Hey?
1: That's it.
0: But have you ever sung a song for a girl? Or am I the first one?
1: Not the song, but I did sing another song for my wife.
0: Ye dekho. Main yahan pe apni.
1: So you're special.
0: यहाँ पे फ्लर्ट कर रही हूँ. इन्होंने एंड में आके बोला है ओके आई सैंग वन सॉन्ग फॉर माय वाइफ, बट आई हैव टू से यू सैंग रियली रियली वेल एंड यू शुड डू दिस ऑफन राहुल.
1: एब्सोल्युटली.
0: थैंक यू राहुल, यू हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर वीकेंड ऑल द मोर सुरीला. माहौल जमा दिया आपने. थैंक यू.
1: थैंक यू वांसी, हैव अ वंडरफुल इवनिंग.
0: बाय
1: बाय. बिग 106.2.

नहीं होती है 5 सेकंड के अंदर। साउंड्स लाइक लड्डू बट गेम पूरा जलेबी है, उलझ जाओगे समझ ही नहीं आएगा। ट्राई करना है तो गिव मी अ कॉल 800-1062 पे। किक स्टार्टिंग दिस आवर विद द वीकेंड वाली फील्स।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:07।
2: बॉलीवुड।

0: holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, this is The Big Thrill. Mansi on the phone line. Sunita, hi, good evening.
3: Good evening, Mansi. How are you?
2: I am good. Aap kaise ho, Sunita?
3: Bahut achhe. I'm very excited. I got connected with you today.
2: Sunita, we'll play the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. Main aapko deti hoon kuch categories. Aapne teen cheeze batani hoti hain. Fatafat, khatakhat, 5 second ke andar. Tayar ho aap?
3: Yes, sure.
2: All right.
1: 5 second rule. Oh, yeah.
2: Quickly tell me, 3 aise masale jo biryani mein padte hain.
3: Dalchini, kali mirch, garam masala.
2: Almost there. Haan ji, almost there. Maine khud bhi bol diya.
3: Badi ilaichi.
2: Quickly tell me, 3 Bobby Deol ki movies.
3: Animal.
2: Okay.
3: Best of Bollywood, if you consider.
2: Time khatam ho gaya. 3 aise gaane jisme dil aata hai.
3: दिल तो पागल है, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे,
2: दीवाना
3: है.
2: ओके, ऑलमोस्ट देयर. 3 ऐसी चीजें दैट यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट योर हस्बैंड सुनीता, जो आप को पसंद नहीं है ज्यादा.
3: वो गिफ्ट नहीं करते, वो फोटो में स्माइल नहीं करते करते और
2: खत्म हो गया.
3: वो मेरी बात नहीं सुनते.
2: ये फोटो में स्माइल ना करना आई थिंक इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम. बट गिफ्ट क्यों नहीं देते हैं आपको?
3: वो कहते हैं खुद जाके खरीद लो. वो क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, बोले कि मैं लेके आऊंगा, तो बोले कि ये ऐसा लेके आ
2: यार. ये बंदे कब समझेंगे यार कि आप क्रेडिट कार्ड मत दो हमें, हमारे लिए एक 10 रुपए का फूल ले आओ. विल चेरिश दैट मोर देन द क्रेडिट कार्ड. कमिंग फ्रॉम टू वुमेन मेन, इफ यू आर टेकिंग एनी एडवाइस हियर, दिस इज वन एडवाइस दैट यू शुड फॉलो इफ यू वांट योर वाइफ और योर गर्लफ्रेंड टू बी हैप्पी. वी डोंट केयर अबाउट योर क्रेडिट कार्ड, वी केयर अबाउट द जेस्चर, है ना?
3: Yes, that's what.
2: अच्छा, 3 ऐसी चीजें जो शादी के बाद बदल जाती है सुनीता. टाइम खत्म हो गया. क्या बदल जाते?
3: मॉम्स बॉय नहीं रहते लेटर.
2: अच्छा,
3: बीवी के हाथ में आ जाती
2: अच्छा,
3: है.
2: मुझे बॉयफ्रेंड सुनाई दिया, मुझे लगा शादी के बाद बॉयफ्रेंड बदल जाते हैं. अरे वाह सुनीता, आपने खेला अच्छा. मोस्ट ऑफ योर आंसर्स वर ऑलमोस्ट विद इन 5 seconds. कुछ हिट और मिस था, बट आपको मजा आया कि नहीं आया? पैसा वसूल हुआ कॉल का?
3: इट वाज
2: लवली टॉकिंग टू यू सुनीता. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. एंड क्या नाम है आपके हस्बैंड का?
3: नवीन.
2: प्लीज सुनीता के लिए गिफ्ट लाओ यार, क्रेडिट कार्ड मत दो. एंड ऑल द नवीन्स लिस्निंग टू मी राइट नाउ, बीवियों के लिए कुछ लेकर जाओ आज घर, दिल बी वेरी वेरी हैप्पी. चाहे वो समोसा ही क्यों ना हो, दैट मेक्स देम हैप्पी. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग सुनीता, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.
3: यू टू मानसी, थैंक यू. इट वॉज नाइस टॉकिंग.
2: बाय. या 5 second रूल, एक ही रूल है इस गेम को खेलने का. मुझे कॉल करना 800-1062 पर. दिस इज द बिग थ्रिल, कीपिंग यू कंपनी. मैं हूं मानसी.

0: 105.2, the beat of Bollywood.
1: This summer, there are surprises all across Dubai, waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
2: InsurersMarket.ae. We insure the cat. We also insure the yacht the cat is sitting on. Pet, yacht, car, health, home, and more. Call 800 Alfred 24/7. InsuranceMarket.ae.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by SelfDrive.ae. Missed your morning buzz?
3: क्या आपको लगता है एक इंडियन टीम को क्रिकेट खेलते रहना चाहिए या थोड़े दिन संन्यास ले लेना चाहिए? क्या
4: खेलते तो रहना चाहिए क्योंकि मैं तो बोलता हूँ, मेरी तो एक ही बात है कि जिस टाइम पे हमको किसी के सामने बोलना होता है ना कि भाई इंडिया जीता है, तो उस टाइम पे इंडिया जीतता ही है।
3: अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि जो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, वर्ल्ड कप
4: वो
3: छोटे मोटे सब मेरे ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ।
4: ये नहीं आओ बस, ये हम इंडिया में बस जब भी इंडिया पाकिस्तान हुआ, कोई भी हुआ, तो भाई हम लोग सपोर्ट करते हैं दिल से।
3: भाई मेरे आयरलैंड के खिलाफ व्हाइट वॉश हो गया, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है?
4: क्या कर सकते हैं, चेंजेस भी हुए ना बहुत से। फिर मैं ना कल सामने वीकेंड के मूड में हूँ, पता नहीं क्यों। ब्रायन तो मैं धमाल का कर रहा था, बट देखते हैं अभी क्या होता है। फ्री मेरे को तो फ्री का पानी में कोई ऑफर कर रहा है तो मैं ना नहीं बोलता, पी लेता हूँ आराम से।
3: वेयर आर यू फ्रॉम मोहित?
4: मैं इंडिया गुजरात।
3: मने खबर हती, मने खबर हती कि आपड़ा वडील मोहित भाई छे, पैसा नहीं बात आई એટલે હું સમજી ગયો।
0: એનર્જી એન્ડ એક્શન મંડે ટુ ફ્રાઈડે 7 AM ટુ 11 AM ધ બિગ બ્રેકફાસ્ટ વિથ સિડ ઓન્લી ઓન બિગ 106.2 ધ બીટ ઓફ બોલીવુડ।
5: લગતા હૈ બરફ પડને વાલી હૈ,
6: કોઈ ના કોઈ રાસ્તા તો નિકલેગા।
0: બિગ વેધર અપડેટ બ્રોટ ટુ યુ બાય અલરાસ, ધ નંબર 1 ઓટો એસી સ્પેર પાર્ટ્સ ડીલર ઇન ધ મિડલ ઈસ્ટ।
7: 35 degrees, low jayega around 33. Very, very humid. Filhal humidity has 72% par.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: You know, लोग कहते थे कि लाइसेंस के बाद जो इंडिपेंडेंस आती है इट्स प्राइसलेस एंड आई नाउ अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट. मतलब लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ, जहां जाना यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट टेक योर गाड़ी एंड ड्राइव. बट इफ यू आर वंडरिंग कि मानसी लाइसेंस है लेकिन गाड़ी नहीं है तो कहां से रेंट करें, बहुत एक्सपेंसिव होता है रेंटल. लेट मी टेल यू, सेल्फ ड्राइव डॉट ए हैज द मोस्ट अफोर्डेबल कार रेंटल इन द यूएई राइट नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ. बिल्कुल सही सुना, 899 दिरहम्स अ मंथ. एट दिस प्राइस पेइंग मोर जस्ट डजंट मेक सेंस. कोई ओनरशिप नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है, जीरो स्ट्रेस. जस्ट पिक योर कार एंड ड्राइव. लुक फॉर सेल्फ ड्राइव डॉट ए ई. डाउनलोड द ऐप नाउ. वेरी इजी, हैसल फ्री ऐप टू यूज. सेल्फ ड्राइव, योर कार, योर प्राइस, योर वे.
0: बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय सेल्फ ड्राइव डॉट ए ई.

0: इट
1: इज बेयर मिनिमम. भाविका आपने बहुत ही खराब खेला. That was so much fun talking to you. You have a great drive back home and thank you so much for calling.
0: Thank you. Bye.
1: Bye. Yeah, 5 second rule. आपने खेलना है तो एक ही रूल है. कॉल करना है 800-1062 पर.

0: 5 minute delay. There is bumper to bumper traffic. अगर आप इस वक्त जा रहे हैं अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, स्पेशली अराउंड अलकूज 4, इसके अलावा कहीं अटके हैं मुझे बताइए 800-1062 पे.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, गुड इवनिंग, टाइम राइट नाउ 7:06।
2: हेलो बॉयज, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको 3 डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Early in the morning, the big breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Henna City Easy Hair Color.
3: Insurance market. .ae. What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the My Alfred app. insurancemarket.ae.
4: Summer is here and Big Ticket is turning up the heat.
5: Win a guaranteed 20 million dirham grand prize.
4: 5 more winners will take home 100,000 dirhams.
5: Play Big Spin live on the show and win up to 1 million dirhams.
4: Plus 4 weekly e-draw winners.
5: Turn your summer into millions.
4: Buy now at bigticket.ae.
6: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
7: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
8: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
9: दो या चार?
8: चार।
9: कब तक वापस लौटेगा?
8: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
9: चार या
8: पांच?
10: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
1: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 p.m. and Sunday 10 a.m. to 12 p.m. only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
13: 35 degrees outside, low jayega around 33. Filhal humidity has 64% par.
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800 Alfred 24/7.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: जिस घड़ी का आप शाम 5 बजे से इंतजार कर रहे थे, द टाइम इज राइट हियर राइट नाउ. आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग समर सरप्राइजेस, योर चांस टू विन एब्सोल्युटली फ्री स्टेकेशन, बीट द हीट इन स्टाइल, मतलब चिल बाय द पूल, एंजॉय सम ग्रेट फूड, मेक लवली मेमोरीज विद योर फैमिली, स्पेंड क्वालिटी टाइम विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल दिरहम. एंड टू विन ऑल दिस यू विल हैव टू रजिस्टर BSS, दैट इज बिग समर सरप्राइज, योर नेम टू 0543091062.
1: Participate in the Spell Battle Contest and with Family Staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almired Ras Al Khaimah.
2: In the next 5 minutes, randomizer is going to pick two names and they'll compete. Spell battle hoga. Jisne bhi school mein achhe se padhai kari, uske kaam aayega aaj sham. So I'll be giving you words related to holiday, vacation, summer, water sports, and if you manage to give me the right spellings, aapka naam jayega draw mein for the big summer surprises. Plus, aaj sham you're walking away with open movie tickets and F&B vouchers. So get set to WhatsApping. And by default, aap bar bar try kar rahe hain, randomizer is not picking your name. You can head to our Instagram पेज, वहां से शॉर्टकट डायरेक्ट एंट्री आपको मिल सकती है बिग समर सरप्राइजेस की. 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर इंस्टा हैंडल.

0: that it has to be Ajab, Alia Bhatt.
1: Ajab, you are so smart. How old are you?
0: I'm 16.
1: Oh my God. What? Your mummy is a mother of a 16-year-old?
0: Yes.
1: No way, Lulua.
0: Hard to believe, right?
1: Oh my God. I would love to meet both of you. So, so beautiful.
0: Likewise.
1: चलो यार मुझे लुलुआ बताओ ये कौन सी सेलिब्रिटी है.
2: सेलिब्रिटी इज आलिया भट्ट.
1: एब्सोल्युटली द राइट आंसर. यू एंड आई थिंक आई हैव टू गिव क्रेडिट टू अजब बिकॉज शी इज द स्मार्टी हु गेस्ट इट. बिल्कुल सही जवाब यार. सो सो लवली स्पीकिंग टू द बोथ ऑफ यू. आई कैन ओनली इमेजिन नाम ही इतने खूबसूरत है आप दोनों के. आप दोनों एक्चुअल में कितने प्रिटी होंगे.
3: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 टू 5 पीएम. The Beat Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: Extremely slow moving. Agar Dera se, if you're going towards Nahada all the way to Sharjah, it is kind of bumper to bumper. मतलब दो सेकंड गाड़ी चलेगी फिर रुक जाएगी चलेगी रुकेगी बहुत ही स्लो मूविंग है. There's also traffic on the Sheikh Mohammed bin Zayed road that is city center motive safe if you're going towards Etihad Mall. Heavy traffic is route पे and there is a 20 minute delay at the moment to Sheikh Zayed पे business पे DIFC. Also patchy traffic if you're heading towards Sports City and Discovery से for Jan. Anything else you'd like to report? Let me know 800-1062 पे.
3: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, this is the Big Thrill and thrilling and exciting staycation aapke liye yahan pe hai. For your entire family, aap ye staycation jeet sakte hai. Beat the heat in style, enjoy some great time with your family members, chill by the pool, great food and best part ye hai, it's all expenses paid staycation. But ye sab jeetne ke liye register karna zaruri hai, BSS apna naam. 054-309-1062. That's our WhatsApp number. Just like Neelam and Pankaj. Good evening.
2: Hi, good evening.
1: Good evening, Neelam ji. आप हैं कि गायब हो गई हैं?
3: मैं हूँ.
1: अच्छा, मुझे लगा कहीं चली गई किचन में कि सीटीवीटी आ गई कुकर पे. खुदा है ना, डिनर टाइम हो रहा है क्योंकि इसलिए मैंने सोचा.
3: सीटीवीटी से फ्री हूँ.
1: सीटीवीटी से फ्री हो क्यों, आज खाना नहीं बन रहा?
3: नहीं, मैं पार्टी में जा रही हूँ.
1: अरे
3: चलो, मुझे आपको भी लेके चलती हूँ.
1: ये देखो, बेगानी पार्टी में मानसी दीवानी. मैं यहाँ बैठी हूँ मैडम, अभी तो मुझे यहाँ से निकलने में काफी वक्त है. आप जाइए, पार्टी कीजिए. व्हाट अबाउट यू पंकज?
2: आई जस्ट केम फ्रॉम ऑफिस. आई एम जस्ट टायर्ड.
1: आई नो, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग वीक फॉर अ लॉट ऑफ अस. बट व्हेन वाज द लास्ट टाइम पंकज आप स्टेशन पे गए थे?
2: बिफोर 6 मंथ्स.
1: ये क्यों, अच्छे अच्छे महीने का किसी डॉक्टर ने बोला है गैप लेने के लिए आपको?
2: नहीं, ऐसे ही टाइम नहीं मिलता ना. अच्छा, क्या करें, ऑफिस.
1: तो फिर ये अगर जीत गए आप तो टाइम कैसे निकालेंगे?
2: अभी तो निकाल लेंगे.
3: मुझे जिता देना मान जी, मैं टाइम निकाल सकती हूँ.
1: हाँ जी, मैं मेरा बस चले तो मैं खुद को जिता लूँ. सबसे पहले मुझे बहुत जरूरत है स्टेकेशन की. बट यू बोथ हैव टू वर्क हार्ड हियर. दिस इज द स्पेल बैटल. मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी, ऑफ कोर्स रिलेटेड टू हॉलीडे, टू समर्स, टू वाटर स्पोर्ट्स. आपको स्पेलिंग बतानी है. जो भी सही स्पेलिंग बताएगा वो जीत जाएगा मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स, प्लस उनका नाम जाएगा इन द ड्रॉ फॉर द बिग समर सरप्राइजेस. बट पार्टिसिपेट करने के लिए, जवाब देने के लिए आपको बोलना है बिग पंकज, बिग नीलम, जोर से. एंड देन आई विल आस्क यू टू आंसर. अगर आपने ऐसे नहीं किया तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है. ठीक है?
2: नो डाउट.
1: ऑल द वेरी बेस्ट गाइस.
0: पार्टिसिपेट इन द स्पेल बैटल कॉन्टेस्ट एंड विन अ फैमिली स्टेकेशन. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
1: All right, pehla word aaj sham is continent.
2: Big Pankaj.
1: Hanji, Hanji Pankaj.
2: C-O-N-T-I-N-E-N-T-A-L.
1: खाना नहीं सर, continental नहीं बोला था मैंने, continent बोला था.
2: C-O-N-T-I-N-E-N-T. C-O-N-T-I-N-E-N-T.
1: बिल्कुल सही जवाब. Continental. All right, 1 point to you, Pankaj. The next word for you is souvenir.
2: Pankaj, big Pankaj.
1: हाँ जी.
2: Souvenir.
1: हाँ. S-O. ये किससे पूछ के बच्चे से बता रहे हो आप मुझे?
2: S-O-U-V-E-N-I-R.
1: नहीं, कौन सा बच्चा बता रहा है आपको?
2: No,
1: कोई बच्चा तो है सर पीछे. कोई बात नहीं, फैमिली स्टेकेशन है. पूरी फैमिली जो है वो चैट जीपीटी से देख के बता दे चलेगा. आपने चैट जीपीटी से देखा नहीं है?
2: नहीं.
1: खाओ कसम मेरी,
2: कसम.
1: वैसे हो गया मेरा काम. नीलम जी, मैं आपको बताऊं कि आपने एक भी जवाब नहीं दिया और इन्होंने देखो बच्चे से मदद ले ली, चैट जीपीटी से ले ली, मेरी झूठी कसम खा ली और लेके जा रहे हैं ये ओपन मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स. पंकज, प्लस योर नेम गेट्स इनटू द ड्रॉ फॉर द बिग समर सरप्राइजेस. नीलम, यू कैन स्टिल ट्राई एंड कीप सेंडिंग अस दोस व्हाट्सएप्स. हो गई है मेकअप शेकअप, हो गया पार्टी के लिए?
3: बस चालू है.
1: अच्छा चलो जी, तैयार हो जाओ एंड एंजॉय योर पार्टी एंड कंग्रेचुलेशंस पंकज. बाय.
2: थैंक यू, बाय बाय.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: एंड आपने सुना पंकज जी ने फैमिली स्टेकेशन के लिए पूरी फैमिली की हेल्प लेके ये स्पेल बैटल जीत लिया. इन फैक्ट यू कुड बी नेक्स्ट. देयर इज अ फन स्टेकेशन वेटिंग फॉर यू. वेरी वेरी सिंपल. रजिस्टर करने के लिए जस्ट सेंड अस अ व्हाट्सएप बीएसएस योर फुल नेम टू 0543091062. यू ऑल्सो हैव अ चांस डायरेक्ट एंट्री का फ्रॉम आवर इंस्टाग्राम हैंडल विच इज 106.2 बिग एफएम. बिग समर सरप्राइजेस हैज बीन मेड पॉसिबल बाय अ प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सॉस अलमरीद Russell Khema. This is the property jahan pe aap staycation enjoy karenge. So don't forget, on Monday also I'll be giving you a chance to win yourself this amazing staycation. In fact, draw mein jaane ka mauka aapko milega. Plus you'll walk away with open movie tickets and F&B vouchers. So do not forget to register. Until then, once again reminding you, our WhatsApp number is 0543091062.
0: Participate in the spell battle contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rissus Al-Mairid, Ras Al-Khaimah. Big.

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यूरी, तेरे बाप कम है?
1: ठीक है माम, तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill with Mansi. And this is the last hour of the show. In fact, we've got a packed weekend lined up for you. Sari details deti hun. But usse pehle, India is not for beginners. India mein public property is literally public property. Ek video viral ho raha hai jisme bahar garmi थी तो एक रोड साइड बार्बर ने अपने क्लाइंट्स के बाल एटीएम के अंदर एसी चला होता है ना, एटीएम्स यूजुअली हैव एयर कंडीशनर, तो या एटीएम्स के अंदर उन्हें ले गए और वहीं पे उन्होंने अपनी दुकान डाली और लोगों के बाल काटने लग गए. दिस वीडियो इज गोइंग वायरल एंड इट इज सो सो फनी, यू हैव टू चेक इट आउट. मोर ऑन द स्टोरी व्हेन आई कम बैक. फिलहाल किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: listening to The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 35 डिग्रीज आउटसाइड, लो जाएगा अराउंड 33। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 64% पर।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life, or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Dekho, if you're from India, you will understand this is not even surprising. मतलब वहाँ पे ये सब होता है. India is not for beginners. We live on jugaad, we thrive on jugaad. अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें you know those roadside barbers जो बाल काटते हैं पेड़ों के नीचे. गर्मी इतनी हो रही है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने कस्टमर्स को थोड़ा AC का मजा दिया जाए while cutting their hair and giving them a head massage. But कौन इतना पैसा खर्च करेगा जब पब्लिक प्रॉपर्टी है, there's ATM there. तो ATM बूथ में अंदर जाके उन्होंने अपनी दुकान लगा ली है और एक एक कस्टमर अंदर जाता है, बढ़िया AC में बाल कटवाता है, बिजली का बिल सरकार दे रही है, एंड दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल इन इंडिया. आई थिंक वन थिंग एज अ देसी दैट आई लव इज द काइंड ऑफ जुगाड़ जो हम करते हैं. एंड लिटरली पब्लिक प्रॉपर्टी को हम पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं. पब्लिक के लिए होती है वो प्रॉपर्टी. लोग ट्रेन से क्या क्या चीजें लेकर जाते हैं. आई हैव जस्ट हर्ड स्टोरीज, बट आई हैव लिटरली सीन पीपल जस्ट सिटिंग एंड चिलिंग ATM बूथ में जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है. व्हाई नॉट, जब तक वो गार्ड आता नहीं है, भैया क्या कर रहे हो यहां से निकलो. यू हैव टू चेक आउट द वीडियो, इट इज हिलेरियस. फिलहाल वी गॉट जैस्मिन सैंडलेस राइट हियर ऑन बिग 106.2. फिलहाल बहुत सारी मस्ती और अच्छी चीजें, इनफैक्ट प्राइजेस भी आपको मिलते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे. तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, डू इट राइट अवे. बहुत मजा आता है 106.2 इट इज.

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

मुझे दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारो नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: बेबी दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता. आम हासला ए वन लाइफ स्टाइल ए वन. आई मुझे न सिखाओ घंटे पे फेम, एक ही बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ. हिटरों की छातियों पे रख दीवे बाल, कटोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देहरादून, दोनों हाथों उठा के हवा में बेबी घूम.
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर.

0: हम खा डर रही है। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है। देखिए
0: ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, that's my song by E. And.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग 106.2

0: Big Chill, where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Chill, brought to you by InsuranceMarket.ae.
1: InsuranceMarket.ae.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस चला गया?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पांच?
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Love, lo-fi and night feels, your soundtracks to unwind, only on the Big Chill on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: आप चुम्मी को घर ड्रॉप करते हो और मैं आपकी गाड़ी से उतरती हूँ और मैं अपने घर जा रही होती हूँ।

0: से पानी मदहोश किए जा मुझे तो कोई खींचे तेरी ओ
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and

बजे सिर्फ बिग 106.2 पर. लव लोफाई एंड नाइट फील्स, योर साउंडट्रैक्स टू अनवाइंड, ओनली ऑन द बिग चिल, ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.